इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जदे पढ़ू था दरूद सजन से पान दरूद बुधन था, यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाज फरमाते हैं। ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाज फरमाते

आपको देखता हूँ माशाल्लाह, आपको देखता हूँ दिल खुश होता है, पीछे देखता हूँ फिर बड़ा नर्वस हो जाता हूँ। अब आपसे गुजारिश है, जो खामोश बैठा हो उससे पूछ लें कि मौला अली का नारा लग रहा है तेनू खैर ते है, क्यों खामोश बैठा है? थोड़ा जा ऊंचा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, सलामत रहें मिलकर। हाँ।

ऐसा नारा लगाए इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बावाज़े बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बावाज़े बुलंद हैदर।

आशिक बैठे हैं तो अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समाज फरमाए बाबाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बाबाजे बुलंद हैदर वरगा सकीन कोई।

0: बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: वो नारे हैदरी।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

जी एसएन प्रोग्राम आहे ईद जो रोशन सुबह ऐं मामा जो मेज़बान ने मतलब जुणे जो अवां सां गॾु गॾु प्रोग्राम रोशन ईद जो रोशन सुबह अवां ॿुधो पिया जीएफएम 88 जे नेटवर्क तां ऐं असां सभिनी खे ईद मुबारकूं असांजे जेका बि असांजे जीएफएम 88 जा इंचार्ज आहिनि ऑफिसर साहब आहिनि रीजनल मैनेजर आहिनि ऐं असांजा कोआर्डिनेटर आहिनि सभिनी जे तरफ़ां जेकी असांजी टीम आहे सभिनी जीएफएम 88 जे टीम तरफ़ां तव्हां सभिनी ॿुधंदड़नि खे जेके असांजे प्रोग्राम पूरी सिंध में ॿुधनि पिया कचे में पके में ऐं जाबलो इलाइक़े में ॿुधनि था शहर में वस्ती वाण में प्रोग्राम ॿुधनि पिया सभिनी खे ईद उल अज़हा जे पुरमुसरत मौक़े ते दिलि जे गहरनि सां ईद मुबारकूं ऐं साईं मुंहिंजा हाणे अव्हां जा नाला अव्हां ताईं पहुचाईंदा हलंदासीं जेके असांखे दोस्तनि फोन ते लिखाराया आहिनि भाग्यो खान शर आहे ॻोठु आज़मदीन शर मीरपुर ख़ासि खां हाफ़िज़ लखमीर ढिलू मोरे खां ऐं उन सां गॾु दोस्त आहिनि हाफ़िज़ सांवल ढिलू ताहिर लुंडो ऐं इमदाद अली शाह हुन सां गॾु आहिनि भाइरनि जी वॾी महिरबानी अहमद नवाज़ गोरी कंबर खां हुन सां भाउ गॾु आहे तारिक ऐं शोएब इमदाद शाह बुखारी आहे पनो आकिल खां भाइरनि जी वॾी महिरबानी ऐं पनवाकिल खां ई ॻोठु आहे सुमराणी इंदड़ खां आहे हाफ़िज़ अमीन अलाए काज़ी ऐं आसिफ अली चाचड़ वासिफ अली बुगटी माहौटन खां क़ुर्बान अली ख़ासकेली झंडोमरी खां ऐं असद लाइ शेख नज़र मले लाड़ेकाणे खां प्रोग्राम ॿुधे पियो भाइरनि जी वॾी महिरबानी ऐं कुझु दोस्त आहिनि ॻोठ मोलेरणे माशी लॻे वॾनि महरनि खां ज़मीर हुसैन सोलंगी ऐं मुख़्तियार अली सोलंगी ज़हीर अब्बास सोलंगी ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर शोएब अली ऐं गुलाम रसूल कुंभर ॻोठ अहमद खान लाशारी लॻे धूणनि खां नियाज़ अली लाशारी नंढो शाहज़ेब लाशारी ॻोठ हसू जतोइन खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद ऐं नसर लाइ जतोई त समिन ईद जे हवाले सां ख़ूबसूरत नगमो अव्हां दोस्त जे नाम

हा जी हा समय ईद वाकई तोसाई कवि भले बिन के बाह लगे भले बिन के साड़ थे पर ईद तोसाई कवि हकीकत आके दोस्त ईद पैंजन से कंदा पैंजे महबूबन से कंदा पैंजे पेरी प्यार से कंदा जेके उनके देश परदेश में कई पैंजे गोठ आया पैंजे प्यार से मिलन आया तो जरूर उन ईद थी भले मान के साड़ थे भले हुजेन असो फराज अली सखर खां भा प्रोग्राम बुधे पे उनकी वड़ी मेहरबानी खालिक लाशारी मीरपुर खास खां नूर हुसैन तुन्यो बदीन खां प्रोग्राम बुधे पे भा की वड़ी मेहरबानी सजादुल्ला जमाली गोठ मोहम्मद हसन जमाली नवाब शाह खां प्रोग्राम बुधन पे उन गडायन भार अली गुल जमाली अली हैदर जमाली उन गड प्रोग्राम भायर बुधन पे उन वड़ी मेहरबानी गोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अकबर चांडियो अहसन अकबर चांडियो फहद अकबर अहद अकबर शादाब चांडियो गोठ शुटो मक्सी लगे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी अकबर खान मक्सी नारा स्टॉप सखर लग सब्जी मंडी खां एजाज अली जुणे जो मुनीब रहमान मुजीब रहमान जुणे जो यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काने खां फौजी इरशाद महेसर एजाज अली कलड़ो फकीर फकीर असो डॉक्टर रिजवान अली कलड़ो माजिद अली जतोई निसार जतोई हरसा की गढ़ी कोरकाने खां सुमर फकीर कोरकानी मीरपुर खास खां भा असो अब्दुल अजीज सोलंगी प्रोग्राम दे पो भाईरन की वड़ी मेहरबानी तो समय खूबसूरत नगमो है अव दोस्त नाम व्या क्यों

0: रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का।
1: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, मजबूत तने, लंबे और सेहतमंद मुंजरों के साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड किसान।

0: शदीद गर्मीअ सबबि शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अजी समेन प्रोग्राम आहे ईद जो रोशन सुबह प्रोग्राम मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां मां जो मेज़बान नेमतला जुण जो जी समेन तव्हां असां ॾे ईद जो मुबारकूं असां ॾे मोकिले सघो था मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो उते एल आर के लिखी स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो लिखी करे तव्हां असां ॾे मोकिलींदो 888 ते ऐं फेसबुक जे आई डी ते बि तव्हां पंहिंजा नाला ईद मुबारक असां ॾे लिखी मोकिले सघो था ऐं असांजो नंबर आन आहे जेको स्टूडियो नंबर आहे बिल्कुलु आन आहे तव्हां उन नंबर ते बि कॉल करे पंहिंजा नाला लिखाए सघो था असांजो नंबर आहे 0332132288 कुझु दोस्त अञा नाबला बि शामिल कंदा हलंदासीं महरम अली बुरगड़ी लग पीर गुलशाह खां ऐं पीर गुलशाह खां लियाकत अली खजड़ बि असांजे प्रोग्राम खे ॿुधनि पिया यासमीन मलिक आहे मीरपुर ख़ासि खां रांझन कोरी ॻोठ मीरपुर ख़ासि खां ऐं मोहम्मद हुसैन खोसो अदील अबड़ो ऐं शाहबान चन्ना कश्मोर खां प्रोग्राम ॿुधनि पिया भाइरनि जी वॾी महिरबानी इक़बाल लाशारी जलूरी ॻोठ मीरपुर ख़ासि खां आमिर हुसैन भुट्टो उन जी घरवारी आहे माइनोश भुट्टो नंढड़ो साकिब हैदर भुट्टो ॻोठ माहोटन खां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी त साईं मुंहिंजा जंहिं वटि पिरी प्यारा ऐं महबूब पंहिंजो न अचनि ऐं उहे इंतज़ार में हूंदा आहिनि त असां कपिड़ा पाईंदासीं भला लटा पाईंदासीं ऐं वे सभु ईद जा नवां सिबराया आहिनि ऐं उहे पाईंदासीं ऐं जेकॾहिं उहे महबूब उहे

ॾींहुं प्यारा चवंदा आहिनि त जंहिंजे लाइ कुल्हे कांधी थियासीं आया ई कोन। बहरहाल जेकॾहिं उहे पहिरीं प्यारा महबूब न अचनि त उहे कपिड़ा कहिड़े कम जा। पर इन खां अॻु में असां ताईं पहुचाईंदासीं दिलदार अबड़े जो शायरी जूं चंद सिटूं आहिनि। आहे ॾुखी हयाती तोखां परे परे, आहे ॾुखी हयाती तोखां परे परे, तोखां सवाइ हिकड़ी न सात सरे सरे, मांदो रहे थो मन ऐं अखियूं सदा भिनल, सिक तुंहिंजी में जिस्म पियो गरे गरे, ख़्वाहिश उहा ई आहे हिकु बीमार जी, ज़ुल्फ़नि जा ॾे शांवरा अंदर ठरे ठरे, नफ़रत जा नांग मारे महबूब मुर्क सां, अच कुर्ब जा कदम खे सजण भरे भरे, ॾे को अची सहारो दुनिया जे सीर में, ॾे को अची सहारो दुनिया जे सीर में, दिलदार यार अबड़ो थी न ख़ुदा तरे तरे। साईं जा दिलदार साहब जो गज़ल अवां ताईं पहुचायोसीं ऐं हाणे मास्टर मंज़ूर जो कलाम ॾिसूं पिया, ॿुधूं पिया त छा पियो चवे।

जी असमन प्रोग्राम आहे ईद जो रोशन सुबह ईद जो रोशन सुबह असो पी प्यारो घोट प्रोग्राम बुधे पो मसूद अली जतो ही असो प्रोग्राम बुधे पो उनके शादी जी मुबारकों भी उनके ईद जो भी मुबारकों साई मुझा जका यह ईद है ईद लोजा है ईद लोजा कुर्बानी जी जो सो ईद है कुर्बानी अल्लाह ताला जी आदो झुकण जो नालो है साई मुझा ईद है सुनत इब्राहिमी है बिल्कुल सुनत इब्राहिमी जे करे जो आए सो गोश्त कयो वने तो उज़ा जिमें वडो ढोर भी थी सके तो गाव ढोर भी थी सके तो उठ भी गोश्त कुर्बानी थींदो आहे बकरे जी आम कुर्बानी अक्सर बकरे वारी ईद भी सॾी वेंदी आहे ईद उल उज़ा खे त साईं मुंहिंजा ईदूं पयूं थींदियूं जेकॾहिं जीअरा आहिनि त सभु पिया मिलंदा पर वरी ही नगमो अवां दोस्तनि जे नाम पिया कयूं ऐं साईं मुंहिंजा कुझु नाला बि अवां ताईं पहुचाईंदासीं मेहर अली कलोड़ो कंडियारे खां हाफिज़ मोहम्मद अमीन बारी जो खोड़ा गंबट खां हाफिज़ मोहम्मद हनीफ़ रिंद इमरान रिंद सदाम रिंद ॻोठ जीअंद रिंद जेकाबाद खां

0: जी असमिन प्रोग्राम ईद जो रोशन सुबुह जारी सारी आहे तव्हां जो असांजो साथ रहंदो ठीक 11 वगे ताईं तव्हां जा नाला बिल्कुल अटेन कयूं पिया कि नंबर असांजो बिज़ी ज़रूर हुजे
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक खूबसूरती ऐं जेतिरो बीट्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहं कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान शदीद गर्मीअ सबबि शहरनि खे गुज़ारिश

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीट फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: शदीद गर्मीअ सबब शहरन खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ास एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252578 6।
5: जी हाँ, 3135525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: शदीद गर्मीअ सबब शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

जी समन अड़ो कहर न कजो पांजे दिल ते कंट्रोल कजो कंट्रोल न कंदो त तव्हांजी जेका दिल आहे उहा स्लिप थी वेंदी ऐं जेको आहे सो माण्हू वञी किरंदो अलाह ख़ैर कंदो तव्हां कोशिश कयो ऐं समी जा कुझु नाला आहिनि दोस्तनि जा जेके अव्हां ताईं पहुचाईंदा हलंदासीं राशिद आवाण मेरापुर खां प्रोग्राम ॿुधे पियो भाउ ईद जो मुबारकूं ॾे पियो दुआऊं ॾे पियो भाउ जी वॾी महिरबानी इरशद अली कोराई मोहम्मद कोराई ऐं नंढड़ो मोहसिन कोराई बैतुल माल कॉलोनी लाड़काणे खां ऐं ॻोठ पुनल कोराई कचे खां ॻोठ पुनल कोराई कचे खां बहावल खान अलाह बख्श कोराई नवीद चनो आहे घोटकी खां भाउ जी वॾी महिरबानी नवाब राहूजो मुदसर मुज़म्मिल आफ़्ताब मुसविर राहूजो ऐं आलम खान चांडियो ॻोठ मीराणी चांडियनि खां ऐं जजलाज लाड़काणे खां अब्दुल गनी अबड़ो शाहिद लतीफ़ हफ़ीज़ रहमान शेख ऐं असांजो मसूद जतोई ऐं जिनसार ओढो प्रोग्राम ॿुधनि पिया ॿाहिरां जी वॾी महिरबानी ऐं ॻोठ घाड़ी वारा शेख लॻे लाड़काणो गुलशेर मंगरियो बि प्रोग्राम ॿुधे पियो भाउ जी वॾी महिरबानी दादू खां मीर हज़ार खान लवश सुमेर अली ऐं आफ़्ताब खुश्क प्रोग्राम ॿुधनि पिया साईं जी वॾी महिरबानी ऐं साईं मुंहिंजा ईद जी जेका ख़ुशियूं आहिनि उहे निरालियूं हूंदियूं आहिनि ऐं हज आहे वारी ईद आहे उज़ाह वारी ईद आहे ऐं क़ुर्बानी वारी ईद आहे ऐं हीअ जेका ईद आहे उहा असांखे पंहिंजो सबक थी ॾिए त तव्हां कंहिंजे आॾो न झुको सिर्फ़ हिकु अलाह जे आॾो झुको ऐं माण्हुनि सां चङा ई कंदा रहो ऐं कंहिंजी दिलि न ॾुखायो ऐं सुनत इब्राहिमी आहे जेका क़ुर्बानी बकरे वारी ईद ऐं साईं मुंहिंजा कोशिशि कयो तव्हां गोश्त अकेलो न खाओ ऐं तव्हां पंहिंजनि में ऐं पंहिंजे मिटनि माइटनि में बि विरायो हिकु हिसो ग़रीबनि में मिसकिननि में फ़क़ीरनि में बि विरायो ऐं साईं मुंहिंजा कुझु दोस्त अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके तमामु घणो गोश्त फ्रिजनि में रखी करे खाईंदा आहिनि महीने ताईं खाईंदा आहिनि पर मां तव्हांखे हिकिड़ो नुस्ख़ो ॿुधायां थो जेको तमामु घणो वक़्तु गोश्त हले ऐं तव्हांखे उनजो फ़ाइदो तमामु घणो पवे त उहो फ़ाइदो इहो आहे त कुझु हिसो ग़रीबनि में मिसकिननि में विरायो जेको अव्हांजो क़यामत ताईं कमु ईंदो ऐं उहो सवाबु अव्हांखे हमेशह पियो मिलंदो ऐं एतिरो रखी न खाओ त बहितर आहे ॿियनि खे बि वंडियो विरायो हज वारी ईद आई आहे ऐं हज वारी ईद में बिल्कुलु क़ुर्बानी आहे क़ुर्बानी जो गोश्त आहे ऐं गॾिजी खाओ ऐं हीउ कलाम वरी गॾिजी ॿुधूं पिया इंजॉय कयूं पिया हज वारी ईद।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

जी हा समय प्रोग्राम जा आखिरी लम्हा आखिरी लम्हन में कुछ दोस्तन जा नाला वांदे पहुंचाईंदासीं ऐं दोस्त ईद मुबारक हुजनि पिया ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी असांजा दोस्त आहिनि पंहिंजो ममंद खान कुंभार वफ़ा जमाल कुंभार उमेद अली कुंभार हाले पुटा स्टाप मीरपुर ख़ासि खान जो झलोरी ॻोठु आहे ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी ऐं नजीबुल्ला बिरोही बि भाउ प्रोग्राम ॿुधे पियो लख कुर्ब भाउ जा ऐं असांजो वफ़ा वहीद जतोई किट शाबिलो खां प्रोग्राम ॿुधे पियो भाउ जी महिरबानी हुन सां गॾु आहिनि असांजा ज़हीर अहमद जतोई बि हुन सां गॾु प्रोग्राम ॿुधे पियो ऐं खुर्शीद शर मीरापुर खां इमरान अली ऐं मोहम्मद हयात शर फरीद महर मीरपुर ख़ासि खां जमालदीन भयो शिकारपुर खां इमदाद लाइ ऐं नेमत लाइ भयो प्रोग्राम ॿुधनि पिया ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी लख कुर्ब त समय आख़िरी प्रोग्राम जे लम्हनि में अव्हां खे वरी ख़ूबसूरत नगमो ॿुधायूं था ऐं तव्हां इंजॉय कंदा रहियो असांखे वरी सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान नेमत लाइ जुणे जो खे वरी हयाती रही त इनशा सुभाणे 9 बजे असां ईद शो में गॾु हूंदासीं तेसीं ताईं अलह निगहबान।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: हाय ईद आ गई, मेरा यार नहीं आया। ओके जी, आप सुन रहे हैं ईद की बातें, और ईद की बातों के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेली आरजे शहबाज बुखारी, और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे सना जी। आरजे सना, वैसे जो परदेश में रहते हैं, जो परदेशी होते हैं, आपको पता है कि परदेश में जब आप चले जाते हैं, कुछ दोस्त काफी ऐसे भी मैंने रिश्ते देखे हैं, बल्कि जितने भी हमारे कुछ रिलेटिव भी हैं, खुदा ना खास्ता जब बंदा अपने रिश्तों से बिल्कुल दूर चला जाता है, एक तो परदेश होता है, एक परदेश में रहकर उसको खबर जब होती है कि उसका अपना इस दुनिया में नहीं रहा, तो जब वो कंडीशन
1: की जो फीलिंग्स होती है, वो कहता है मैं उड़ के चले जाऊँ ना, आसमान क्रॉस करके चले जाऊँ, मैं उसको देख लूँ जाकर। और बाय चांस ऐसा होता भी है कि वो देखने चाहता है, उसको वीजा मिल भी जाए, एरोप्लेन में बैठने लगता है ना, और कभी फ्लाइट मिस हो जाए, कभी एक घंटा लेट हो जाए। रिसेंटली दो दिन पहले आई हूँ फ्लाइट से, दो घंटे लेट हुई थी, तो मैं तो बैठी थी, अगर कोई इमरजेंसी हो तो उस बंदे की जो फीलिंग है ना, वो बंदा वहीं खड़े खड़े मर जाना है उसने,
0: भाई
1: ये फीलिंग होती
0: है। ये तो बात बिल्कुल हकीकत है, मैं इस चीज को एग्री करना चाहता हूँ। अभी तकरीबन कोई 3-4 साल हुए, बल्कि ये जो 2026 है, जो बाजायद सिर्फ मैं अपनी बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ सखर में नहीं रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान का हर कोना कोना हमने घूमा है ना।
1: सही बात है
0: कि जब कोई मजबूरी पड़ जाती है, जब कोई ऐसी कंडीशंस हो जाती है, जब बंदा कहता है कि यार मैं आंखें बंद करूं और खोलूं, मैं अपने घर में मौजूद हूं, तो जब ऐसी कंडीशन के अंदर जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर आपका जो सफर है वो तवील हो जाता है,
1: बहुत लंबा हो जाता है, चाहे एक ही दिन क्यों ना वो गुजर ही नहीं रहा होता।
0: चले भाई, अभी तो हमने तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन मेरा यार नहीं आया, ईद आ गई, मेरा यार नहीं आया। तो भाई आपने सना को बताना ये है कि आपने किस जानवर की कुर्बानी, कॉलेज नंबर है, नोट करना है, सब से नाराज है क्योंकि

0: मोदी जी मेरे लस्सी दवा खरीदे हम थे चार की तो सरकार ना मैसेज ना मिस कॉल आई मिस यू यार। तो भाई जैसे समय मैं बात करता कुर्बानी के हवाले से, तो कुर्बानी के लिए जो है अगर हम बात करें जब हम छोटे होते थे बिल्कुल ही जब अनमेच्योर होते थे तो हमें बड़ा शौक होता था भाई कुर्बानी आ रही है और कुर्बानी के जानवर देख रहे हैं। और हमारे यानी कि हमारे इलाके के अंदर जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं पर जो है वो गायें ज़िबा हो रही है, कहीं पर बकरे ज़िबा हो रहे हैं और कहीं पर ऊंट जो है वो ज़िबा किया जा रहा है। सुन्नत इब्राहिमी है तो हम हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि सुन्नत इब्राहिमी के अंदर जो है हमने वो तमाम सुन्नत को अमल यानी कि उसके ऊपर अमल करना चाहिए जो कि हमारे ऊपर लागू है। अच्छा मैं एक चीज ये करना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ, बल्कि काफी बड़े बड़े जानवर भी, अच्छा कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं कि जो अल्लाह की रजा में राजी होकर खुद जो है नॉर्मली तरीके के साथ जो है वो ज़िबा होने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ इतने बड़े जिद्दी जानवर होते हैं खुदा ना खास्ता बड़े नुकसान भी होते हैं और आपने सोशल मीडिया पे देखा भी है कि कुछ बड़े नुकसान हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे कसाई दोस्त हैं जो जिनके हाथ में चाकू होता है और जिनके हाथ में जो है वो टोका होता है उस टाइम जो है वो बकरे उनको जो है ना अपनी यानी कि नजरों में उनको अपना दुश्मन मानते होंगे। भाई ये आ गया, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज ये थोड़ा सा एहतियात करवाना चाहता हूँ अपने तमाम दोस्तों से कि कभी कभी शौकियाँ जो है वो गले पड़ जाती हैं। ऐसी खिड़कियों से अगर कोई देख रहा हो ना कि बकरा या गाय ज़िबा हो रही है तो भाई ऐसे लोगों को ना मैंने जानवरों की लाते खाते हुए देखा है। ऐसे ही है क्योंकि वो हीरोपन सारा निकलता है। भाई जब जानवर को ज़िबा करते हैं तो उसमें ताकत का मुजाहरा नहीं किया जाता, उसमें जो है अक्ल का मुजाहरा किया जाता है कि जानवर को ज़िबा कैसे करना है। आपको पता है कि कितने बड़े हादसात हो जाते हैं और कई जाने चले जाती हैं। तो एक्सपर्ट बंदा होता है और इस टाइम जो है जहाँ तक अगर बात करें जो कसाई जो है बंदा अपने बच्चों को पेट पालने के लिए पता नहीं किस किस हद तक चला जाता है। जो अनप्रोफेशनल काफी ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने चाकू और खंजर हाथ में उठाया हुआ है जानवरों को काटने के लिए, उसके अंदर भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस का होना लाजमी होता है।
1: काट लेंगे ना,
0: ऐसा बिल्कुल नहीं हो जाता। भाई मैंने ये देखा कि एक दफा मैं अपने ही सखर के मीनारा रोड हमारे ऑफिस के नीचे ही है कि जानवर जो है वो आगे जा रहा है बंदे पीछे जा रहे हैं। परेशान हो गया कि जानवर इसको लेके जा रहा है या ये जानवर लेके जा रहा है। तो भाई वो जानवर जो था माशाल्लाह और देखे ना खुदा की कुदरत देखे कुछ जानवर था, मैं समझता हूँ कम से कम उसका 10 मन वजन होगा। उसकी जो हाइट थी वो 6 से 7 फुट थी, उसकी जो लेंथ थी वो कम से कम 7 फुट का वो जानवर था लेंथ में, हाइट उसकी 6 फुट की थी। माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे जानवर हैं और आप अपने रब की कौन कौन सी नमतों का क्या कर सकते हो। अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा जानवर बहुत ज्यादा आया है। हम सक्कर की अगर बात करें भाई सक्कर के अंदर जो है इस टाइम जो मार्केट है तो जानवर के हिसाब से देखी जाए, आपने कभी देखा है कि मार्केट को कभी व्यूज देखेंगे मार्केट के अंदर जानवर कितना सस्ता है कितना महंगा है मार्केट का कभी देखा है? कभी नहीं।
1: मैं मतलब गई हूँ लेकिन मतलब अबू वाले सौदा कर रहे होते हैं तो मुझे पता नहीं होता इतना कि यार ये कब गिरती है कब नहीं। कहते हैं कि लास्ट डेज में जाएंगे तो कम मिल जाएगी, स्टार्टिंग में जाएंगे तो महंगे देंगे।
0: अच्छा ये एक सोच होती है लेने वाले की भी और देने वाले की भी सोच होती है। मैं समझता हूँ जो पहली जो आवाज आ जाती है कानों में वो आपके लिए मुकर्रर होती है, फिर बार्गेनिंग करना, फिर इतने ऊपर नीचे। हमने 3 बकरे लिए कि 3 में से 1 बकरा जो है इस टाइम जो है मैं समझता हूँ कि जिनका जो वजन हो रहा है एक बकरे का 25 से 30 किलो।
1: अच्छा
0: हाँ। बकरा जो है 1 लाख से कम नहीं मिल रहा।
1: हाँ, नहीं मिल रहा,
0: नहीं मिल रहा ना। तो रात के 3 बजकर जो बंदा बेचने वाला था वो भी थक गया, जो लेने वाला था वो भी थक गया। अच्छा 3 बकरों का हो गया सौदा। 3 बकरे थोड़े से यानी कि पहला जो बकरा था मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा वो जान में भरा हुआ भी था और उससे जो छोटा उससे दूसरे नंबर वाला बकरा था थोड़ा कम था, उससे तीसरे वाला उससे और थोड़ा कम था, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन थी। तो 1,70,000 में तीनों का सौदा हो गया।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सौदा है।
0: हाँ, बड़ा अच्छा सौदा था,
1: बहुत अच्छा सौदा है।
0: क्योंकि बकरा जो है वो उठ नहीं रहा था जमीन से, वो थक चुका था,
1: थक चुका था।
0: अभी देखे ना कि जानवर है, जानवर बंदा इंसान थक जाता है। आप सोच सकते हैं कि जो गर्मी हो रही है इस गर्मी के मौसम के अंदर जो है कंडीशन कैसी होती है जानवर की या इंसान
1: बहुत,
0: की
1: बहुत ज्यादा।
0: तो भाई बातों का सिलसिला चलता रहेगा। पहला लाइन पर कॉलर मौजूद है खुशनसीब जो सन्नत से बात करेगा, देखते हैं कॉल कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। अदा कह रहे कितने गला रुपया इमदाद अली दायो साहब लाड़कान मौसम की है लगे तो बर्फबारी थी
2: बहुत गर्मी आया
0: घनी गर्मी आ
2: हाँ ढी गर्मी
0: आ।
2: खैर
0: साहब خیر مبارک عید کی پہ گزرے؟
2: شکر الحمدللہ.
0: ہاں سنا پوچھے بھی جانور کیڑو تا سیوا کیوا
2: اجا کون وتوا
0: اجا کون وتوا
2: جی جی نو وتوا اسا دوستو کجو ہیں
0: کیڑا دوست ہیں تمجا
2: فیصلہ دایو عطا لائے دایو
0: بیو
2: جواب علی دایو
0: اے تمام دایو برادری کے سلام تمجو صحیح ہاں
2: وعلیکم السلام لکھو یاسر علی دایو
0: ٹھیک ہے بڑی بڑی مہربانی پنج فون نو کیا لکھدا دا چلیں جی اگر آپ نے ابھی بھی ریڈیو آن کیا ہوا ہے تو آپ بھی مجھے کال کر سکتے ہیں. ہمارا کالنگ نمبر ہے 03-000-11-34-88. ایک کال لائن پر کالر موجود ہے, دیکھتے ہیں کون کہاں سے.
1: ہلو السلام علیکم.
2: ہلو
1: ہلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: کیسے ہیں آپ بھائی؟ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
2: خیر کہہ رہے ہیں, آپ سناؤ کیسے ہو؟
1: بالکل ٹھیک الحمدللہ. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں, کون ہیں؟
0: یہ اشرف المخلوقات ہے.
1: نام تو بتا دیں بھائی. آپ کون بات کر رہے ہیں جناب؟
2: امجد علی خورخانی.
0: امجد علی خورخانی صاحب پانچ ریڈیو جی آواز گھٹ کے اوپر آواز کلیئر ہی دے
1: جی
0: کالے میں رانا.
1: بھائی صاحب آپ جاگ رہے ہیں, سو رہے ہیں؟ پپنو
0: اکیلے میں پپن بولو کالے میں. اچھا بھائی کالنگ نمبر ہمارا ہے, بڑا آسان سا نمبر ہے اور سنا میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ
1: آج بات کر سکتے ہیں. سب سے بڑا جو ہے نا آپ کے لیے سب سے بڑا میری طرف سے تو گفٹ یہی ہے کہ لائیو آپ لوگ بات کر سکتے ہیں. عام دنوں میں کہہ رہتے ہیں آج جیسے نام نے آپ سے کال پہ بات کرنی ہے تو آج کے موقع ملا ہے تو کریں نا بات اور ٹائپ کریں 03-000-11-34-88 پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور مجھ سے بات کر سکتے ہیں. اور بنا ڈرے کہ میں نے آپ سے گوشت مانگنا ہے, میں نے آپ سے نہیں مانگنا, آپ مجھ سے جسٹ بات کر لیں, میرے لیے یہی کافی ہے.
0: ہاں جی لائن پہ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو.
2: وعلیکم السلام.
0: جی ادا کہہ رہے ہیں کتنا کال کیا رانا؟
2: نوید
0: مچنا چال والا خوش ہیں
1: کیسے آپ بھائی, کیسے؟ بالکل عید مبارک آپ کو ہماری طرف سے.
0: ہاں یہ بتایا گوشت گھنو کٹھو کیوں تھی؟ ہاں یہ بتایا ہاں ہاں دشمن درد بدن جڑو. اچھا بدن جڑو. اچھا حال والا بھی خیر ہے تب ٹھیک ہے, عید کیے بھی گزرے. ہلو ٹھیک ہے, ہاں عید کے موقع تے ایک سٹھو سانگ تو بدائنا سانگے. ہاں نا ہلو. اچھا بھائی یہاں پر چھوڑ
3: اس عید پاری نظر کیے. ہائی ڈیئر لسنرز, میں ہوں آپ کا آر جے امیر بخش. میری جانب سے عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر آپ لوگوں کو دل

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खनो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ, बुड़ी 231 525 786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: ओके जी, बिल्कुल प्यारे दोस्तों, जिन्होंने अगर अभी अभी रेडियो ऑन किया है, जी एफएम रेडियो नेटवर्क, और भाई प्यारे प्यारे दोस्तों को एक बार फिर दिल के गहराइयों से ईद का पहला दिन जो है बहुत बहुत मुबारक हो। और इस टाइम हमारा प्रोग्राम का नाम है ईद की बातें, और ईद की बातें प्रोग्राम में आरजी शहबाज आरजी सना आपका पूरा पूरा साथ निभाएंगे पूरा पूरा एक बजे तक। 11:38 हो चुके हैं भाई। इस टाइम सक्कल लाड़काना मोरो मीर प्रकाश मेरापुर कंडियारो और नवाबशाह बदीन ठट्टा सकरण के तमाम प्यारे प्यारे दोस्त हमें सुन रहे हैं। लाइव कॉलिंग नंबर जो है हमारा भाई बड़ा आसान सा है कि अभी आप हमारा नंबर डायल करें, हमसे बात करें, 03000113488 पे मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। देखते हैं कि लाइन पर कॉलर कौन कहां से है। अजय भाई कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। चलो भाई कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अगला कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम सुहाब साहब, तेरा हाल है ने?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कह रहे हैं कि थैंक यू लाइवा नालू शायर है ना
1: आपसे चली चाहते ना लार करेंगे ना तो ब्रेक ले एक कमर से ना ब्रेक करे खत्म से भी हमारे प्यारो आवाज बदम आपकी सना से हमारे ईद मुबारक।
0: बाबा खैर मुबारक खैर मुबारक। केड़ा हाल ठीक ठाक आयो? ईद की है भी गुजरे
1: चाचा
0: भी गुजरे। अलहमद बिल्कुल ठीक ठाक आयो। थदड़े स्टूडियो में बैठा हूँ, प्रोग्राम बुधो पी थद भी लगे। एसी सोरन ते आया हाँ असा उनके ट्रेवीन ते करे छो यो बुधा के अज ईद जो पे डो तोठ में आयो किथे गुजारो अव लाड़काणो खबर अव मुख्य दिल से वण है
1: शहबाद
0: मैं लाड़काणे रण आई रन आया
1: कदी बुधा
0: मां एक सखर हों एक लाड़काणे हों तुझे लाड़काणे जो चांडका रोड लाहौरी मोहल्लो पाकिस्तानी चौक सजो घुमियल बकराणी चौक इनशाला हाँ एक गानो बुधायो असा के सना बुधे भी सना थोड़ी नाराज उनके परचाइणो

0: कि लिसनर जो है ना हमारे वो मजबूर हो जाएंगे, अभी वो कॉल करेंगे भाई सन्ना आप ये बताएं कि हमने गोश्त पहुंचाना है कहां पर है, ठीक है ना। तो भाई ये लिसनर के साथ मुकाबला भी है हमारा, तो बल्कि जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर जो है बड़ा आसान सा नंबर है सन्ना, उसको रिपीट कीजिएगा।
1: जी जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, टाइप करें 03000113488। मैं रिपीट कर रही हूँ, 03000113488 पे आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात करने का मौका एक दफा दोबारा हासिल कर सकते हैं भाई। क्योंकि हर वीकेंड पे तो आपसे मेरी कॉल पे बात हो नहीं सकती या होती नहीं है, तो फिर इसलिए आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं।
0: तो भाई जल्दी जल्दी करें कॉल मिलाएं। और यहाँ पर 11:44 हो चुके हैं, मुझे लगता ये है कि फिर से छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम होने वाला है और कमर्शियल छोड़ यानी कि 3 कमर्शियल है, उसके बाद हम आपके लाइव कॉल अपने शो में शामिल करेंगे।
2: आज भी सिर्फ ही है GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिर्फ की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: बिल्कुल वफ़ा कान हर को जल्दी बुढ़ा था
1: हाँ हाँ
0: पर तो भी असा वफ़ा 88 सा कई आ
1: वाह बिल्कुल बिल्कुल तमाम मुख्य ये लगे तो माशाल्लाह तमाम बुजुर्ग थी वो तजा बटी या बटी रंद किरी पवंदा पो भी तासा जो प्रोग्राम बुद्ध
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई बादशाह नंढड़ी बेटी भी तारे गद वेठी आई दिसा तो मैं बेटड़ी के भी भलीकार चंदा वे बेटड़ी नंढड़ी जो अगर गाले पाई
1: अच्छा अच्छा अदड़ी अदड़ी अदड़ी अदड़ी
0: हाँ अदड़ी जा बेटी जा बाजी
1: हाँ अदी बेटी बाजी इतना बड़ा लगा दे रहे हो आपको
0: बेटी तारे भलीकार
1: बेटी कह रहे बेटी आपको भलीकार हाँ आप क्या कहना चाहेंगे इसको सना
2: मैं क्या बोलना चाहूंगी आप लोगों ने सारी हिंदी में बात की और मुझे बहुत ज्यादा
1: वो कहना चाह रहे हैं कि अदी भी कह रहे हैं आपको बेटी भी कह रहे हैं बहन भी कह रहे हैं
2: तो अदी और बहन एक ही तो बात है ना
1: हाँ अभी बेटी भी एक ही बात है
0: ये शायद ये अदरिया सही बोली न थी समझे
1: उर्दू में गला उर्दू में
0: उर्दू जरा सा कहा थे गा रहे या सिंधी पेपर बलायो ताकि भाषा बार ने अदरिया बेटी के ईद मुबारक
1: खैर मुबारक अच्छा यो वही ये बुधायो कि तमाम जानवर केड़ो ज़िबा कयो आहे
0: यार असल में गाल कहें मां खुली अजा अस ज़िबा न कयो भाई तैयार में आयो एकड़ो ढोर हुंदा में धाना खड़बा न वडे ढोर में सत
1: जी जी जी
0: उने तैयारी में आयो त अस का धानू खणो बगा अस हाल फिलहाल अजा ज़िबा न कयो
1: हलो हलो ठीक है अल्लाह से तमाम कुर्बानी भी कबूल फरमाए तो गोश्त थोड़ो हल्को खाई जो पेट पांजो अक्सर मानू वधी खाइंदा न पो वरी हॉस्पिटल
0: सच पुछो त ताग मा हकरी ताई जी चैनल थोड़ो हकरी मारो केस कदम
1: हां
0: जे कबूल पे
1: जी जी
0: त गोश्त जेको आए कुरान में लिखत हर शय उदय जे हिसाब सां हले मानू ओड़े पाड़े के दे पर गरीब ब्याहन उन खे भी दे ई न त पंहिंजी फ्रिज भरे रखन ई न करणु खपे पर हे त हल उदय खे छॾ पर हूअं बि वॾा नंढा ॾींहं थींदा आहिनि गोश्त तयारु थींदा त पाड़े में गरीब बि खोड़ हूंदा
1: आहिनि
0: सार लहदी
1: हाय मुंहिंजो यार मुश्की भूरन खां मां बस कई
0: हा
1: गानो
0: बाक़ी नंढड़ो वारो त असांखे अॼु तव्हांखे ईद मुबारक आहे तव्हांजे ॿुधंदड़नि खे ऐं जेके तव्हांजे 88 सां हिकिड़ा जुड़ियल जी बाबर शेख साहब जी बाजी सुमिरा ताणी हले आयल कान हिकिड़ी वरी ॿी बेटी रुखसार खे खोड़ सारा सलाम भाषा बाद तव्हां खोड़ सारा सलाम भाई हिकिड़ो वरी जलाल जो कलाम अथव
1: जी जी जी तव्हांखे ॿुधायो
0: त हिन ईद ते हो अचणो प्यारो पिरी न वायो न की सुरमी ज़री पाती न की नेरो लटो लाथो हिन ईद ते हो अचणो इहो हिकिड़ो आख़िर में तव्हां हाणे 11-12 था जॾहिं विच में जेको ॿुधाईंदव त मां त झूम बि नचंदुमि
1: तव्हां हाणे नचो साल जो गर्मी ॾाढी अथव मतां तव्हां नचंदे नचंदे
0: कुझु भार पिया आहिनि
1: हा
0: हा मुंहिंजो भाउ आहे ज़हीर में जतो मुंहिंजो भाउ आया में जतो हिकिड़ो छोकिरो हाणे ॻाल्हायो आस पिता चल लाड़काने खां
1: ठीकु आहे वॾी वॾी महिरबानी
0: जेके ॿुधनि था जते पर सॼे सत खे सलाम
1: अच्छा जी ये काफ़ी हमारे जो प्यारे प्यारे दोस्त है जो कि सराउंडिंग एरिया का जेका असांखे ॿुधनि पिया जेका असांजा कच्छी का दोस्त ॿुधनि पिया सराउंडिंग एरियाज़ का ॿुधनि पिया उन्हनि खे बि ईद जो लख लख वधायूं हुजनि अच्छा भाई बात करते हैं अच्छा सना मैं सिंधी में भी बात करूंगा आप उर्दू में बात कीजिएगा कुर्बानी का जो गोश्त होता है और अनलिमिट खाने से भी आपको पता है कि कितने नुकसान हो जाते हैं अक्सर जब आप प्लेट भर लेते हैं अक्सर आपको पता है कि खुदा ना खासा जब आप अनलिमिट खाते हैं उससे काफी सारा आपकी जिस्मानियत को आपके पेट को नुकसान पहुंच सकता है
2: क्योंकि ये हम लोग खाते हैं एक शिफा होती है इसके अंदर लेकिन अगर हम इसको अनलिमिटेड खा लें तो कोई भी चीज अगर आप ज्यादा यूज कर लेते हैं तो नुकसान का बायस बन जाती है ना तो लोग समझ रहे होते हैं हमें दोबारा नहीं मिलेगा बस खाते जाओ तो ऐसा नहीं है इस गोश्त को भी कहते हैं कि आप 2-3 दिन आप इसको खाएं इसके अलावा आप इसको रखें भी ना अपने पास क्योंकि लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे पूरी पूरी गायें काटने के बाद फ्रिज भर लेते हैं तो ये चीज गलत है ना आपने क्या करना है पहला अपना निकालना है दूसरा रिलेटिव का निकालना है तीसरा उसका निकालना है जिसको ये चीज जिस पर है कि भाई उसको चाहिए उसको मिले जो पूरा साल इंतजार कर रहा होता है जैसे कि मैंने आपको बताया तो ये लोग क्या करते हैं अपना अपना फ्रिज भर लेते हैं और जब ये लोग बनवा रहे होते हैं आपने देखा है आजकल का जो रिवाज है होटल्स में जो है अभी कहते हैं कि होटल हमारा बंद है जी यहाँ पर अभी आपको क्या चलेगा कि जो आपने अगर अपना गोश्त लाकर दिया है तो आपने वो ऑर्डर चल रहे होते हैं तो ये कितना गलत है देखिए उनकी रोजी तो वो चला रहे हैं अपनी तरफ से लेकिन जो दूसरा बंदा है वो क्या करे आपने गायें काटी आपने फ्रिज में रख ली तो ये कुर्बानी तो नहीं हुई कुर्बानी तो वो होती है जो आपने अलग राह में पेश किया और आपने उसको लोगों तक बांट दिया आपने रखी ली अपने लिए तो ये कौन सी कुर्बानी हुई भाई तो आप पूरा साल खाते हैं और बकरे का गोश्त तो रखना भी नहीं चाहिए एक हफ्ते के बाद इसमें टेस्ट लेस हो जाता है वैसे भी अगर आप देखें जी

0: और जी बिल्कुल प्यारे दोस्तों देखते हैं कि हथ मथे क्या सी डाढ़ो आ पुजी ना सगिया सी डाढ़ो आ आई दिसो ता लाइन ते केर असा सा गद आडो आ अभी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम शबाज भाई सनाती क्या हाल है ठीक हो दोनों
2: ठीक आओ बताएं आप कैसे हैं और कौन बात कर रहे हैं जनाब
1: जनाब नौशरफ से आप
2: नौशरफ रोज से सुन रहे हैं वाह
0: कैसे हैं आप इम्तियाज भाई ठीक है खैरियत से नौशरफ फिरोज का मौसम कैसा है
2: ईद कैसे गुजर रही है ये भी बताएं
1: अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी में मौसम बहुत गर्म है
0: देखें जी इसमें भी खुदा पाक की अल्लाह ताला की हिकमत है
2: जी
0: गर्मी में आम पकते हैं खजूरें खजी पकती है तो भाई उनकी नेमतों का कौन कौन सा हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं
2: बिल्कुल
0: भाई अल्लाह पाक ने हमें अपनी नेमतों से नवाजा हुआ है गर्मी में भी एक हिकमत है गर्मी में भी एक सदाकत है अच्छा गर्मी के मौसम में जो है मैं ये चाहता हूँ कि खास तौर आप जो मासूम बच्चे उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए
2: बिल्कुल उनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए बिला फालतू तो घर से बिल्कुल निकालना भी नहीं चाहिए बच्चों को
0: अच्छा अभी मुझे ये बताएं कि कुर्बानी का जानवर कौन सा जिबा किया भाई नौशरो फिरोज में
2: जो कि मेरा सवाल है ऐसे ही
1: कर रहे हैं लेकिन
0: शाम पर सना ने रखा हुआ है स्टूडियो में सना ने शाम पर रखा हुआ है स्टूडियो में
2: नहीं नहीं भाई
0: अच्छा अच्छा अब आप खैर आते भाई ठीक है
2: वो तो गोलघाट के भाग जाएंगे
0: अलहमदुल्ला पांच खुश सारो ख्याल रखे जो एक गानों पे हले हथ मथे क्या से डाढ़ो आ पुजी न सगिया से डाढ़ो आ ठीक है पांच खुश सारो ख्याल रखना रहना ओके।

0: के हो तो आवाज भी सिंसी है। GFM 88 नेटवर्क सिंसी आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हाँ 2131525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: कॉल लीजिए एक
1: जी कॉल लेते हैं ना
0: चले भाई कॉल पे देखते कौन है अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी अदा के नहीं कितने गले पर राणा
2: शहद
0: जी
2: शहद में तो
0: केड़ा हाल ठीक है कितने का कॉल किया राणा माशाल्लाह मीरपुर खास का कॉल किया है मीरपुर खास वाला सब ठीक है खुश हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह के जाम बनकर आए मतलब जाम मुबारक हो जन तहाजे
0: अच्छा वीडियो हर वक्त पे सेट
2: किया करना होता है जेमी तेरे मुकाबले सही
0: जी
2: मुझे कुछ फ्रेंड्स मुझे आने के डेली में जाना
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल क्या फ्रेंड्स हैं तमाया दोस्तन की याद क्यों दोस्त दोस्तन जी मिल्कियत हों दा हैं
2: बिल्कुल
0: जी बुदाय हो क्या दोस्तन हमारा
2: फ्रेंड्स मुझे आए में दुम्बाले वो शहर है ना तने गुलाम लिखा
0: जी
2: फिर जाए में कुछ ऐसा मुझे पांजा है ना अंडा
0: जी जी
2: अंडा नहीं चाहती अंदर मोहम्मद जोर आए मोहम्मद सुल्तान के पुत्र अमदानी मोहम्मद फारूक गुलाम फारूक नालवा मुझे मामू आएंगे हम सब ने मुझे मदद आल टू आल दुमला वाले मुझे मनी तक गुमार को आए इंशाल्लाह और किसी या करना थी मना दिया बैठे हैं गुजरात पीछे वाले अभी
0: वरी वरी मेहरबानी मिठा अल असीं अवांखे सलामत रखे पांजो खोड़ सरो ख्याल रखना थैंक यू अच्छा जी कुछ कमेंट और कुछ मैसेजेस अपने प्रोग्राम में शामिल कर लें सना क्या ख्याल है और देखते हैं कौन दोस्त कहां से है क्योंकि हमने मैसेज भी शामिल कर रहे हैं और भाई मैसेज सबसे पहले मैसेज करने वाली है रोजीना और सक्कर से कहती है अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप दोनों मैं बिल्कुल ठीक आपका शो बहुत अच्छा है सना मेरा गोश्त घर पे रेडी है और एड्रेस बताएं कहाँ पहुँचाना है हाँ जी सना
1: तो सही हम ये आज शबाज का एड्रेस बता देते हैं
0: अच्छा जी ओल्ड सक्कर हाशमी इमाम बारगा और वहाँ पर कार पार्किंग होती है तो वहाँ पर आप 8 बजे आ जाइएगा तो जब गाड़ी पार कर रही होगी तो वहाँ पर आपने गोश्त पहुँचा देना भाई तो भाई एक और लाइन पे कॉर्नर मौजूद है लाड़काना वाले कहाँ चलेंगे भाई लाड़काना लाड़काना की भी बात करते हैं अभी अस्सलाम वालेकुम कॉल डिस्कनेक्ट हो गई भाई अच्छा सना मुझे ये बताएं अभी हम बात करते हैं कुछ सिटी के हवाले से इस टाइम लाड़काना बहुत अच्छा है और लाड़काना के जो वहाँ पर ऑडियंस है मोहब्बत करने वाले हैं
1: प्यार
0: करने
1: वाले हैं
0: और आप लाड़काना गई हैं कभी
1: लाड़काना बस एक दफा गए थे हम लोग आपके साथ तो हमारे ट्रिप था ना
0: नहीं मैं
1: आप नहीं थे जी बिल्कुल
0: आपके टीम के साथ कभी भी हम लाड़काना नहीं गए हम वैसे लाड़काना गए हैं अच्छा लड़का हमारी टीम बहुत अच्छी है लड़काना की और लड़काना वैसे बहुत अच्छा है लड़काना के अंदर काफी हमारे इवेंट्स भी हो चुके हैं वहाँ के जो ऑडियंस की जहाँ तक बात करें क्योंकि लड़काना के जो जितने भी एडिशंस हैं जहाँ हमारी बॉलर्स की जो क्लासें हो रही होती हैं उसके अंदर बड़ी एक्टिविटीज बड़ा मजा हो रहा होता है तो वहाँ की जो टेक्नीशियन हैं जो एडिशंस हैं बड़ी एक्सपर्ट हैं लड़काना जो है ट्रेनिंग में जा रहा है फैशन की दुनिया में
1: हाँ तो हमें तो लाड़काना वाले याद ही नहीं कर रहे होते भाई क्या हमारे
0: भाई मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आप लाड़काना के किसी भी इवेंट्स में हमारे साथ चलेंगे तो आप नहीं आप ये आप सोचेंगे कि यार ये लाड़काना सिटी है हम लाड़काना भी मौजूद हैं हाँ जी बिल्कुल
1: तो मुझे तो याद ही नहीं करता कोई भी क्या
0: और लाड़काना के अंदर जो है माशाल्लाह काफी अच्छी ऑडियंस जो है जितने भी ऑडियंस है लाड़काना के जितने भी खवातीन हैं लाड़काना में जो ट्रेडिंग सिस्टम चल रही है यानी कि जो ब्यूटिशियंस की जो अपनी कैरिंग चल रही है ड्रेसिंग के हिसाब से देखें अगर ब्यूटी के हिसाब से देखें तो काफी एक्सपर्ट है वहाँ पर
1: अच्छा ये चीज मैंने नहीं देखी मैं तो सिर्फ एक दो जगह पे ही गई थी तो बस इसलिए लाड़काना में विजिट करके आई थी
0: भाई लाड़काना से जितने भी हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं तो लाड़काना वाले लाड़काना को हाईलाइट करें और लाड़काना वाले भी हमें कॉल कर सकते हैं सेकंड वाले कॉल कर सकते हैं
1: और दावत भी दे सकते हैं बुलाने की हमें बुलाने की दावत भी दे सकते हैं हमने नहीं
0: दे सकते हैं भाई दे सकते हैं ईद का पहला दिन जो है सना देख लें आप भी माशाल्लाह अभी मैच्योर हैं पहले दिन कुर्बान भी बंदा बिजी होता है दूसरे दिन मेहमान नवाजी में तीसरे दिन घूमने फिरने में
1: हमें भी
0: तो मेहमान नवाजी के लिए कल हो सकते हैं आपको बुलवा लें
1: अच्छा
0: ठीक है ना
1: एक दिन पहले पड़ता है ना
0: भाई एक दिन पहले पड़ते हैं भाई तो पहली दावा देखते हैं कहाँ से आपको मिलती है अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम सर क्या हाल है साईं
0: हरदम तवां जो ख्याल है राणा कह रहे कितने का कॉल किया
3: मैं तेरे

0: सियारे में तव्हां सां मुलाक़ात थी सर, एफएम ते यारहं प्रोग्राम सर, वरी हाणे गर्मियुनि में सर एतिरे अर्से खां पोइ तव्हां असां कॉल कयूं था सर, तॾहिं बि तव्हां असांखे दिलि जलायो था सर असांजी।
1: न न मां दिलि जलाइण वारो माण्हू ई न आहियां राणा।
0: सर सिविल अस्पताल वञूं था, डॉक्टर बि हुते जेकी दवा सही नमूने नथा कनि उहे बि ॾेखारियूं था, हेॾो 88 ते असां रिंग कयूं था, कलाक थी वञे सर नंबर बिज़ी बिज़ी सर, उहे बि दिलि ॾेखारे वञूं था सर।
1: हिकड़ी ॻाल्हि त थिए आहे के नंबर हिकिड़ो आहे, कॉलूं करण वारा हज़ारे माण्हू आहिनि, त पोइ नंबर त बिज़ी मिलंदो नंबर वन। नंबर टू ॻाल्हि इहा ई आहे त असां सभिनि खे कॉल्स खणंदा आहियूं, जंहिंजी कॉल ईंदी आहे असां इहो नयो ॾिसंदा हीउ कॉल करण वारो दोस्त केरु आहे, असांखे इहा ख़बर हूंदी आहे की कॉल अचे पई असां अटेंड कयूं।
0: सर बिल्कुलु तव्हांजी सची ॻाल्हि आहे, पर असां प्रोग्राम तव्हांजो कोई बि ॿुधायूं न, पर कॾहिं कॾहिं दिलि चवंदी आहे असां कॉल कयूं त पोइ हुन कलाक में मज़ो प्रोग्राम ॿुधण जो मज़ो ख़राब थी वेंदो आहे सर,
1: छो
0: कॉल हणंदो आहे न मज़ो प्रोग्राम हली वेंदो आहे।
1: पोइ कॉल न था कयो, सिर्फ़ प्रोग्राम ॿुधंदा कयो।
0: बिल्कुलु ग़लती थी वई तव्हांजे कई, बसि तव्हांजे घणे हफ़्ते में पोइ कई, 6 महीना थी विया,
1: कोई मसइलो न आहे। साईं अव्हांखे सलामत रखे, ईद कीअं बि गुज़रे राणा।
0: ईद सर ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
1: अलाह साईं अव्हांखे सलामत रखे, ख़ुशि हुजो पंहिंजे दोस्तनि सां पंहिंजे बचड़नि सां गॾु। त छा चवणु चाहींदा लास्ट में?
0: लास्ट में सर बसि एतिरे में जेके दोस्त सभु ॿुधनि था सभिनी खे सलाम, तव्हांखे वधि में वधि सलाम सर।
1: वालेकुम सलाम राणा, दिलि में रखिजो, ठीकु आहे, ख़ुशि रहो, हाणे खिली ॾेखार त ख़र्ची ॾियई। ओके वाह वाह, ईअं खिलंदो रहो भाई। हमारे जितने भी लिसनर हैं जो हमें कॉल कर रहे होते हैं तो हम कॉल मुख्तसर सी ले रहे होते हैं, काफी सारी बातें भी करनी पड़ती हैं, और जितने भी हमारे दोस्त हैं। अच्छा लाइन पे एक और कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: जन्नत का मकाम तज़ुकुल हराम खाने को मिले आपको, पछता और बादाम। राणा एडी स्पीड में कह रही,
2: सबसे पहले आपको मुबारक हो सर,
3: गाय पीछे
1: माशाल्लाह। ये ॿुधायो की पोयां छा लॻो थी, कहिड़ो ढोर आहे तव्हांजे पोयां? गांव अकेलो बीठो आहे, ॿाहिरि बीठो आहे, अंदरि बीठो
2: आहे?
1: माशाल्लाह दरवाजे ते बीठो आहे। राणा टेम्परेचर ॾिसंदो मथे 50 सेंटीग्रेड खां मथे थो वञे।
2: जी साईं
1: गर्मी नथी लॻे तव्हांखे?
2: न न गर्मी न लॻंदी।
1: हेवा कहिड़ी मखलो का जिन आया? अच्छा माशाल्लाह, कहिड़ा हाल आहिनि? ठीकु आहे, ईद कीअं बि गुज़रे?
2: ईद माशाल्लाह।
1: अच्छा सना नाराज़ वेठी आहे जंहिंजी गोश्त जी कंहिं दावत न ॾिनी
2: आहे
1: जी?
2: छा चयो तव्हां?
1: नाराज़ इन करे आहे की तव्हां कहिड़ो जानवर ज़िबा कयो आहे?
2: असां कोई बि न,
1: कोई बि न। वाह वाह, हिकिड़ो गानो त ॿुधाए राणा।
2: कहिड़ो गानो?
1: सोनो कोई सुठो गानो ॿुधाए जीअं तूं जीअं पाण सोनो आई।
3: अच्छा
1: वाह जी वाह माशाल्लाह, अलसी तव्हांखे सलामत रखे, पंहिंजो कोट सारो ख़्याल रखंदा जानी।
2: जेके बि लिसनर ॿुधी रहिया आहिनि मुबारकूं,
1: ख़ैर मुबारकूं। ओके अच्छा भई जल्दी लिखे प्रोग्राम को लाइक एंड शेयर करें।

0: अच्छा जी सना, आपको पता है कि इस टाइम हमारे इवेंट हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले जो आर्टिस्ट की बात करें तो फिल संजरानी, जो कि पाकिस्तान का बहुत प्यारा नाम, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम या अली मदद।
0: मौला अली मदद। तो फिल भाई केड़ा हाल? ठीक ठाक तबियत से? ठीक है। जो पेरे उड़ाड़ो तो मांगे खूब सारे मुबारकों।
1: आज शहबाज बुखारी के उन संगठन सही सचन सही संगत के आज जी सही टीम के अहले वतन आलमे इस्लाम जी सिंधी दुनिया जे मुसलमान के जेके इन वक्त रेडियो ताज ता उन बहन के तुफान खान संजरानी जे तरफा ईद दी लखे करोड़े मुबारकों बाबा
2: जी। मुबारक है, मुबारक। कैसे हैं आप तुफैल संजरानी सर? कैसे हैं आप? और ये बताएं, अब वैसे मुझे अब लग रही है कि ईद हो रही है क्योंकि आपसे बात हो गई हमारी, तो ये बताएं कैसी गुजर रही है ईद आपकी?
1: आज बिल्कुल ईद है, आज ईद कुर्बान है और जी लोग कुर्बानी भी कर रहे हैं।
2: आपने क्या की कुर्बानी मुझे ये तो बताएं, आप तो कम अज कम बता दें जी।
1: आप लोगों ने भी कोई कुर्बानी की है या शहबाज भाई कुर्बान हो रहे?
2: अरे ऐसे ऐसे ही समझो अभी तो कुछ आप बताएं कि आपने क्या कुर्बानी की?
1: जी हमने कुर्बानी की है अल्लाह की राह में, अपनी जुबान की कुर्बानी की है, निगाह की कुर्बानी की है।
2: तो बस हमें अपना मेहमान या आप हमारे मेहमान कब बन रही है बताएं
1: जी। इंशाल्लाह बहुत जल्द, बहुत जल्द।
2: अच्छा तो आप हमारे मेहमान बनेंगे या हमें बनाएंगे अपना मेहमान ये बताएं?
1: नहीं, हम दोनों तरफ दरवाजे खुले हैं ना।
2: अच्छा जरूर जरूर जरूर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: एकड़ो जबरदस्त सॉन्ग थी लास्ट में, एकड़ो वी आई भी सोना साईं
1: मुर्शिद साईं मुर्शिद तेरी शहनशाही मैनो कर मरण ताई मुर्शिद ताई बुखारी मुर्शिद ताई।
0: वाह वाह वाह वाह, अल्लाह सीता की सलामत रखे। तो फैल भाई आबाद शाद जो खोर सारे तरह दुआओं में मौला ताकि आबाद रखे। ठीक है,
1: थैंक यू बाबा जानी।
0: ओके लव यू। अच्छा भी ये थे हमारे साथ कॉल पर तुफेल कर सजरानी, मेरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड दोस्त हैं और तकरीबन हम इवेंट्स में साथ होते हैं प्रोग्राम्स में। अगले कौन हो सकते हैं लाइव कॉल पर हमारे साथ बताएं आप?
2: देखते हैं कौन है वो बंदा।
0: अच्छा जी मैं तो कॉल सबको मिला रहा हूँ, अगर कोई बिजी हुआ तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बैक कॉल जरूर आएगी। ठीक है जी, अगला
2: टाइम
0: हो सकते हैं मैं असगर खोसो को भी लाइन पे ले लें, उससे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो भाई जल्दी करें प्रोग्राम को लाइक एंड शेयर करें, पूरा नेटवर्क हमारे साथ इस टाइम कनेक्ट है ईद की बातें में, ईद की बातों में। और पहले हमारे साथ जो पाकिस्तान बल्कि मैं वर्ल्ड के नंबर वन आर्टिस्ट कहूंगा जो स्टेज के बादशाह है तुफैल सजरानी, और अगला कॉलर देखते हैं कौन हो सकता है।

0: अच्छा जी बिल्कुल प्यारे दोस्तों, इस टाइम पाकिस्तान सिंध का हमारा बहुत अच्छा नाम हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अजगर अपना अजगर खोसो से भी आपने देखा होगा, वो भी लाइन पर मौजूद थे। और अपना तुफैर खान सजनानी, पाकिस्तान का सिंध का हमारा बहुत प्यारा नाम, आसिफ पहाड़ उर्फ गामो। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
0: आसिफ भाई चाल वाला खुश आयो तबे ठीक है?
1: जी जी शुक्र आता बुधा खैर खैरे था।
0: हाँ बिल्कुल ठीक है। ईद जो पेन डर तमा के खोड सारी ईद जी मुबारक हो जन।
1: मेहरबानी खैर मुबारक हूं ताके भी ईद मुबारक हूं जेके मुजो आवाज डिसन ता बुधन ता सबनी मुसलमानन के असा ईद लुजा जो खोड सा भी मुबारक हो जन।
0: अच्छा गामू भाई इन टाइम पूरी सिंध संगे बुधे भी पूरो हैदराबाद हैदराबाद का वटी करे पूरी सिंध संगे बुधे भी बल्कि लाड़कानो भी कनेक्ट है शिकारपुर कंदकोट जेकाबाद कश्मोर छा मैसेज देन चाहिए दो ईद लुजा के हवाले से तमा
1: वो मैसेज यो दी दूं तो सबनी के गोश्त जो बब बूटी में जो चार चार पज पज बूटू वधिक जो हडा घटो जन छिछड़ा घटो जन घर जा भाती जी खाएन ओसे ही कई तो एडो सारो जको 50,000 80,000 जो जानवर वतो तो बब बूटी वसा के वो मेहरबानी कर पाखन गोश्त हो जे सबनी के बब बूटू न जो अल्लाह के मनो यो भाई चिचड़ा अडा पाजे ला रखो गरीब जो हक के हक उनन के मिले और कबे के गोश्त जो कबे के मोहब्बत जो कबे सा प्यार कयो दिल में नफरत खत्म कयो।
0: वाह वाह बिल्कुल। आरजी सना इन मुसंगत बैठी है। आरजी सना तवा जी वाली प्रस्तार है माशाल्लाह तवा जी टिकटॉक वगैरह दिसदी रंदी आ। आरजी सना
2: जी जी बिल्कुल बताएं आप कैसे हैं और ये बताइए कि आपने कुर्बानी में क्या किया। अभी तो चले ठीक है एक्सपेंस तो बढ़ गए हैं हर चीज के लेकिन कुर्बानी तो करनी होती है ना।
1: जी जी
0: आज सना दीदी मुझे लाए गोश्त आए ना
1: गोश्त
3: सदा हंसते रहे जैसे हंसते हैं फूल दुनिया के सारे के पर तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक।

0: अस्सलाम वालेकुम. तो जी वेलकम बैक वंस अगेन. और एक बार फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपके साथ मौजूद हैं. जैसा कि दो घंटे हमारे पता ही नहीं चलते और अभी भी दो घंटे ऐसे खत्म हो गए हैं जैसे हमारे थे ही नहीं. तो अभी ये बताइए कि यार अब तो पूरे दो घंटे हो गए हैं और आप लोगों ने तो ऐसे डर के भाग गए जैसे हम लोगों ने, हमने आपसे कुछ नहीं चाहिए. और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि यार ईद उल अजहा है क्या, तो ईद उल अजहा के मैं मायने भी आपको बताती चलूं कि ईद उल अजहा को कुर्बानी की ईद यानी बकरा ईद और बड़ी ईद भी कहा जाता है. ईद उल अजहा जुलहज की 10 तारीख को मनाई जाती है. ये ईद हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की सुन्नत को ताजा रखने के लिए मनाई जाती है. ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाती है. ईद की नमाज के बाद साहिब अस्तात लोग जानवरों की कुर्बानी करते हैं. अल्लाह की राह में गाय, बैल, ऊंट, बकरी की कुर्बानी दी जाती है. कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहला हिस्सा अपने लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा गरीब और मिस्कीनों के लिए होता है. ईद उल अजहा मोहब्बत, भाईचारे और एसारो कुर्बानी का दर्ज देती है. लेकिन हम लोग तो उसको एक शौक बना लिया हमने कि यार हमने जो है ना इसको शोशा करनी है, जानवर को लेके घुमा रहे हैं, लाइटिंग्स में खड़ा करें. ये चीज नहीं है. कुर्बानी एक सेक्रीफाइस का नाम है. आपने कुर्बानी हर चीज से देनी होती है. नियत की कुर्बानी देनी होती है, आपने लोगों की दिल आजारी से रोकने की कुर्बानी देनी होती है. तो ये चीजें कुर्बानी अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी अगर आप करते हैं तो जरूर कबूल होती है. हाँ, तो आप दूसरों के लिए भी ईद वाला रखा करें और ईद को अच्छा से गुजारा करें. और मुझे बताया तो है नहीं, तो जी जाइए अकेले अकेले एंजॉय करिए, कलेजी खाइए, पाए खाइए और हमें तो बिल्कुल ना बताइए क्योंकि हमने तो देना है ही नहीं. तो ऐसे ही है ना आलिश शहबाज, आप मुझे बताएं.
1: जी बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन ये है कि बाज़ुका तो हम अपने लिसनर्स को मायार तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उनको इतनी एडवाइस कर सकते हैं कि आप जो है यानी कि अगर किसी ने भी कोई कुर्बानी की है. अच्छा देखिए, जो ये सना जो तल्ख हकीकत है, इस टाइम जो महंगाई चल रही है, महंगाई ने सबके घुटने जो वो टेक दिए हैं. ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि इस महंगाई में भी तकरीबन ये आफरीन है कि मार्केट के अंदर जो है जानवर काफी सारा जो है वो बिका भी है
0: जी।
1: और सेल आउट भी हुआ है, लोगों ने लिया भी है. अच्छा, कुछ लोगों की प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है कि जब बंदा आपने कुर्बानी करनी है तो आपने पूरे साल का ना एक बजट बनाया हुआ कि इस साल मैंने कुर्बानी करनी है, उसके लिए आपने कमेटी डाली हुई है या उसके लिए आपने जो है अपना एक प्लान किया हुआ है. देखो कोई भी काम होता है ना, प्लान को सक्सेस करने के लिए तो आपने उसके लिए बेहतर एक प्लानिंग करनी होती है. जब आपकी नीयतें साफ होती है, मंजिलें आसानी हो जाती है. तो इस टाइम कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा, मुझसे मिलते भी हैं, क्योंकि हमारी जो फील्ड है इस टाइम तकरीबन जितने भी हमारे कॉस्मेटिक्स वाले दोस्त हैं या अदर जितने भी मार्केट्स के दोस्त हैं, हम जिस यानी कि इस टाइम दौर में चल रहे हैं, ये बिल्कुल महंगाई का दौर है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी फैमिलीज को दे रहे हैं. बिजली के बिल हैं, गैस के बिल है, अखराजात हैं, किराए का घर है, फिर भी अल्लाह की राह में जो है आप हिम्मत करके छोटा या बड़ा जानवर कुर्बान कर रहे हैं.
0: ठीक है,
1: और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अनलिमिटेड है, वो भी कुर्बानियां कर रहे हैं. लेकिन मैं इस टाइम जो बात करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, कुर्बानी छोटी हो चाहे बड़ी हो, जिस अकीदत से आपने उस जानवर को लिया है उसी अकीदत के साथ जो वो कुर्बानी देनी चाहिए. जैसे कि आपने बड़ी अच्छी बात करी कि ये जो सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, देखिए जी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि जब आपको ख्वाब आया कि आपने कोई प्यारी से प्यारी चीज कुर्बान करनी है, आपने अल्लाह की राह में जो है पता नहीं कितने ऊंट जो है काबिल जो है, मैं कहता हूँ 100 से ज्यादा ऊंट कुर्बान की, तो फिर ख्वाब आया कि इससे प्यारी चीज, उससे प्यारी चीज, प्यारी से प्यारी आपने अपना बेटा जो है वो कुर्बानी के लिए तैयार कर दिया अल्लाह की राह के अंदर. जो है जब आंखों में पट्टी बांधी गई, पट्टी बांधने के बाद जो है पता पड़ा कि जन्नत से एक दुम्बा आया तो वो जिबा
0: वो कुर्बान हुआ.
1: तो भाई कुर्बानी के लिए छोटा जानवर हो चाहे बड़ा हो, तो कुर्बानी कुर्बानी होती है. लेकिन कुर्बानी की यकीनन बाकी 3 हिस्से किए जाते हैं, पहला अपना, तीसरा जो है दूसरा जो है रिश्तेदारों का हो, और तीसरा जो हिस्सा होता है उन लोगों का होता है कि जो कि मुस्तहिक लोग होते हैं, जो कि जिनके ऊपर हमारे ऊपर जो फर्ज है कि हम उनकी उनको जो है वो कुर्बानी का गोश्त उनको दें ताकि उनके जो बच्चे होते हैं. अच्छा, हमने कुछ चीजों को ना अपने सुन्नत को और अपने फ्राइज को जो है वो ट्रेंडिंग यानी कि सोशल मीडिया की तरफ लेके चले गए हैं.
0: बिल्कुल ऐसे ही
1: हर चीज को सोशल मीडिया पे लेकर आ चुके हैं और फिर हम उसको फैशन में भी लेकर आ चुके हैं. भाई पहले दिन कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी करेंगे भाई आपने जो है ना मुझे ना रान का गोश्त देना, बड़ा अच्छा सा देना, अच्छा सा पीस मेरे लिए निकालिएगा.
0: ठीक है,
1: फिर आपने अच्छा दिया, मैंने भी आपको اس سے بھی اچھا گوشت بھیج دیا. ٹھیک ہے, پھر آپ نے پلان کر دیا کہ جی ہاں اچھی بات ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ گیدرنگ بھی کریں, ہر چیز بھی کریں, لیکن میرا جو دیکھیں میں کسی کے اس کی تنزیہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ کچھ بھی کرے کہ مثال کے طور پر اپنی فیملی کو ٹائم دیں, دوستوں کو ٹائم دیں, تو پہلا دن ویسے بھی فیملی قربانی کا ہوتا ہے, دوسرا دن اپنے رشتہ داروں کا ہوتا ہے, تیسرا دن جو ہے وہ آپ اپنے انجوائمنٹ کے لیے رکھیں. جیسے لوگ اپنا ٹکے بناتے ہیں, کباب بناتے ہیں, تو یہ شوق پورے کرنے چاہیے. لیکن جہاں تک جو بات جو حقیقت والی یہی ہے کہ آپ فریج نہ بھریں, آپ لوگوں تک وہ گوشت پہنچائیں,
0: وہ کھائیں گے تو آپ کو دعا ملے گی نا, تو آپ کی قربانی سے قبول ہوتی جائے گی. یہ تھوڑی کہ آپ نے ذبح کر دیا آپ کی قربانی قبول ہو گئی, ایسا نہیں.
1: ہاں ایسا نہیں ہے کہ سنا آپ سے ناراض نہیں ہے, سنا بالکل ناراض نہیں ہے, سنا کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں اور سنا نے ماشاء اللہ بہت اچھا ڈریس بھی پہنا ہوا ہے, لیکن ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ سنا ناراض کیوں ہو سکتی ہے. بھائی کال کرتے ہیں سنا کا موڈ ٹھیک کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور شاپر یہ جو خالی آیا وہ یہی شاپر خالی واپسی ہی جائے گا آپ کے ساتھ. بھائی لائن میں کون موجود ہے, دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. چلو ایک زبردست سانگ نے پلے کر دیا ہے ملکو اسٹوڈیو کا, اور یہ سانگ اسپیشلی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے پیارے پیارے دوست ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. اچھا جی, گھر کے اندر جو ہے ایک ماحول ہے خوشی کا, قربانی کے گوشت کا. بھائی بریانیاں پک رہی ہیں اور ماشاء اللہ کڑھائیاں پکائی جا رہی ہیں, وائٹ ریڈ ماشاء اللہ, آج مزے ہی مزے ہوں گے. بھائی یہ سانگ اسپیشلی ان پیارے پیارے دوستوں کے نام کرتے ہیں جتنے بھی فیملیز ہمارا پروگرام سن رہی ہیں, جن کو بھی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. اسپیشلی ملکو کی پیاری آواز, ملکو اور نادیہ ہاشمی کی پیاری آواز,

आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

السلام عليكم. आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क और हमारे साथ यहाँ पर जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप लोगों के साथ मुखातिब हो चुके हैं जनाब इस प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है ईद की महफिल. और जनाब ईद की महफिल प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. और इसी के साथ साथ आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाले हैं ईद के इस स्पेशल प्रोग्राम में. आप तमाम जो सुनने वाले समातों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. तो बताएं जरा क्या हालचाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक है, मजे में, ईद कैसी जा रही है. और इसी के साथ साथ प्रोग्राम में आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जनाब. प्रोग्राम में बहुत ज्यादा बातें होंगी आप लोगों के साथ साथ और बहुत ज्यादा ऐसी बातें जो कि आप हमारे साथ शेयर करते हैं. और इसी के साथ साथ आप लोगों को बताया जाएगा कि ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचा जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. तो बहुत सारी बातें तो हम करेंगे लेकिन साथ साथ जरा खूबसूरती की बातें भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है. तो खूबसूरती की बातें करेंगे और साथ साथ तो भाई आज ईद का दिन है माशाल्लाह से. तो जितने भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं तमाम तो लोगों को मेरी तरफ से सबसे पहले भाई ईद मुबारक. और इसी के साथ साथ आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आसिद्रा अकेली कैसे आ गई है. तो ये आप लोगों को बताते चले कि अकेली तो खैर मैं नहीं हूँ. ऐसा हो सकता है कभी कि भाई ईद का प्रोग्राम हो और आपकी आसिद्रा

0: किया है। और जो लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो लोग स्पेशली इंतजार करते हैं कि अगर ईद का दिन हो और हमारे रिजवान साहब हमारे साथ रिजवान साहब भी मौजूद होने चाहिए प्रोग्राम में, ताकि प्रोग्राम में चार चांद लग जाए। तो जो लोग रिजवान साहब को याद करते हैं,
1: चांद होते हैं वो महीने के चौथे महीने में आते होंगे, लेकिन मैं तो
0: साल में एक
1: दो कुर्बान वाले कुर्बानी वाली ईद पे हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हजरात, तव्हां खे कुर्बानी जूं बकरा ईद जूं कड़ो कड़ो मुबारकूं हुजनि। मां लॻो पियो हुउसि, मां चयो शायरी वायरी कढी वठां, को चैट जीपीटी खां वठां, पर हाणे हिकड़ी पुराणी किसियल पिटियल शायरी न कोटेशन आहे, चओ जेको बि चओ, ईद पर सिर्फ़ जानवर ई कुर्बान मत करें, अपनी ज़िद अना हसद और बदगुमानी को बि कुर्बान कीजिए, दिल साफ करें ताकि कुर्बानियां
0: कबूल हो जाए। ये तो बिल्कुल आपने
1: एक और भी डायलॉग मिला है, ईद मुबारक जो नाराज हैं उनको भी, जो दूर हैं उनको भी, जो बात नहीं करना चाहते उनको भी, जो ताल्लुक नहीं रखना चाहते उनको भी, सबको दिल ईद मुबारक।
0: ये तो मतलब वो वाली बात हो गई कि सबको आपने बस ईद मुबारक बोल दिया। अब पूरे प्रोग्राम में जो है वो बस बाकी जो लोग हैं वो आपको बोलेंगे। वैसे आप ऐसा करें कि माइक जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी आप अपनी तरफ का
1: आप जो है वो अब सही है, ठीक है। ख़वातीनो आज़ाद, हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे ईद जूं ईद उल अज़हा जूं खोड़ सारियूं लख लख मुबारक हुजनि। जी एफ एम नेटवर्क सां तव्हां असांजो ख़ुसूसी प्रोग्राम ॿुधो पिया, ऐं दिस प्रोग्राम इज़ स्पॉन्सर्ड बाए
0: White
1: H and D Skin, White H Beauty Cream and D Skin Beauty Cream। तो आगे चल के हम इसका नाम वाइट आर भी रखेंगे, क्योंकि मैं ये क्रीम इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, तो वाइट आर हो जाएगा, वाइट रिजवान, अल्लाह करे वो दिन
0: ऐसा हो जाए। सारे लोग फिर अपने नाम से लगा लेंगे कि जिनको बस वाइट लगाएंगे, फिर अपना नाम आगे से जोड़ेंगे।
1: सारे लोग नहीं ना, सारे लोग तो सेलिब्रिटी नहीं होते ना, सारे लोग तो रिजवान नहीं होते,
0: वो तो सही बात है, लेकिन लगाएंगे तो सारे लोग ना।
1: आप तो आज ऐसे बकरा ईद है, मैं लगाता हूँ, देखें काफी
0: अभी तो खैर मुझे लग रहा है आपने नहीं लगाया है,
1: बस मैं आज से लगाना शुरू करूँ।
0: आज से लगाएं, आप स्टार्ट कीजिएगा जरूर से। और वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ ब्यूटी क्रीम नहीं है भाई, इनके और भी मजीद बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं।
1: ईद का मौका है तो हम इस्तेमाल करें।
0: अच्छा, तो ये ईद के स्पेशल मौके पर मैंने तो पहले भी लिसनर्स को कहा था कि जब ईद का ये स्पेशल दिन होगा और लोग तैयार होंगे, तो ज्यादातर ऐसा होगा कि मेकअप जो लड़कियां नहीं कर पाती हैं गर्मी के मौसम में, तो वाइट एश वालों की वाइट एश लवली क्रीम भी मौजूद है, जो कि फेयरनेस का काम करती है। आप मेकअप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़के लड़कियां सभी लगाएंगे, और ये लड़के भी लगाएंगे और लड़कियां भी लगाएंगे, मर्द हजरात और ख्वातीन भी लगाएंगे। चले वो वाइट एश की लवली क्रीम आप सारे लोग लगाइएगा, बहुत एक जबरदस्त प्रोडक्ट है।
1: लड़का कहा करो, मुझे अच्छा लगता है।
0: जी जी बिल्कुल। और जो लोग आपको अंकल बुलाते फिर
1: तो खुदा जी का उन्होंने छड़ाई थी दी, वो छा चवां। कल अंब पे उठा बुधाए मैं, कल अंब पे उठा मार्केट में, तो एकड़े हमरा के चई मां तो पांजे चूंडिया पे, उन हमरा के चई दवाई तो के छा खपे, तो चई तो पेरियो चाचे के खान दे, अलायो कसम सही तो बुधाए सिदरा पोते डठम बाबे जेडो हमरा हो, मुझे तो अंदर सड़ी रत सड़ी वही
0: मानू कना अक्सर पांच मिनट
1: के दिल तो चाहे पी तो हाँ ये अंब बट रही हणास मुंह में
0: रम करे। चलो सब जगह भी लिसनर असि बुधन पे एक गाल बुधी छो, बाबा रिजवान साहब के चाचा न चवे नंढो छोकरो
1: गानो बानो बुधरा हाँ एडो। अच्छा पे सामने के बुधाई हलूँ तो मुझे ख्याल में कमेंट्स भी कमेंट्स भी पैनल से टेक्स्ट मैसेजेस भी लाइव कॉल भी वक्त इलाही महदूद आने जल्दी
0: हो जाए। चलो गानो बुधंदी पर को सवाल वगैरह टॉपिक कुछ हों प्रोग्राम में नहीं
1: कचहरी के हूँ एतो बुधाई हल अज खैर सिदरा ईद उल अज़हा है यो असो को सकाफती दिहाड़ो ना यो असो मजहबी त्योहार है मजहबी जो है सो ढी ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो इन इवेंट जो हज जो कुर्बानी जो तमाम गहरो ताल्लुक है असा पैं सामिन से अज इन ईद के इन इवेंट के हवाले से हाल अहिवाल भी कंदी कुछ सवाल भी बुधाईंदी पुछंदी कुछ जवाब भी असा दींदी सही आ मन असा हल्की फुल्की इन ईद के हवाले से ही पे कचहरी कंदी ऐं सुभाणे खां अॼु शाम खां गोश्त वोश्त खाइण जो सिलसिलो शुरू थी वेंदो
0: इंशाह। ईद वारो प्रोग्राम त अहिड़ो हूंदो आहे जेको माण्हुनि खे इंतज़ारु हूंदो आहे त रिज़वान साहब आएंगे और दोनों साथ में प्रोग्राम करेंगे। कुझु लोगो को अच्छा लॻंदो आहे, कुझु लोगो को शायद अच्छा नहीं लॻंदा, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो करेंगे। चलिए ये गाना सुनिए आप तमाम लोगों के नाम, और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमें कमेंट कीजिए, पैनल पर मैसेज कीजिए, कॉल भी आप लोगों की कुछ देर बाद हम जो है ना वो पिक करेंगे। और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ईद की महफिल, और स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के। दावन सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए।

0: सबको ईद मुबारक और यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं और खैर मुबारक खैर मुबारक अथव अच्छा तुम्हें कोई सवाल पूछना है लिसनर्स का
1: शामिल करो ये
0: कमेंट्स मैसेजेस शामिल कयो अच्छा हाँ बिल्कुल बिस्मिल्लाह
1: शामिल कयो
2: जी
1: जी हां मौसी तो सरप्राइज न दिना गाल में गाल निकल दिया ना को याद है चाचा जी आए वाने जिस
0: पाणी आणे न दिसो इया गाल तां जी गलत आ ना याद ता पाणे इन गाल के कबूल न कयो अगर कयो था तो पोए वरी
1: मजाक
0: हां चलो मजाक भले कयो नूर संतनियो भास से गड मौजूद आन मोहब्बतो प्यारे भाजू और चाचा खालिद जुनी जो मेरे साथ मौजूद है तमा की बीदे जू खोड़ सारी मुबारक हो जन और न खालावा हिदायतुल अहमदानी हमारे साथ वालेकुम अस्सलाम और निदड़ी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम ईद मुबारक हो कहती है ईद मुबारक दोनों को
1: खैर मुबारक निदड़ी
0: और ये किशोर भाई
1: निदड़ी आला 8-10 निदड़ी
0: ट्रेन ट्रेन निदड़ी वन
1: बाकी वन निदड़ी टू निदड़ी थ्री
0: ये निदड़ी वन
1: जी
0: हाँ नंबर वन उन अलावा किशोर भाई हेलो और हेंजी क्या कहते ईद के डी भी न अज तो खैर ईद जो पे डी आए ना गोश्त वोश्त वा कम जो ना वो सुबाने का स्टार्ट थियण वाला है
1: सुबाने थेलो बाचको खणंदास
0: वठंदासीं या विरहाईंदासीं
1: विरहाईंदासीं अल्लाह सां विरहाइण वारो अल्लाह सां जा
0: शुक्र
1: आहे मुंहिंजे मालिक
0: तव्हां
1: बि माशाला क़ुरान शरीफ़ माशाला रेगुलरली पढ़ंदा आहियो ऐं तर्जुमे सां पढ़ंदा आहियो सो अल्लाह सां ईअं पंहिंजे क़ुरान पाक में शुक्र करण वारे खे एतिरो पसंदि कयो आहे जो हुनखे वधीक नवाज़ण जा वाइदा कया अथई ऐं वरी नाशुक्रे खे ओतिरो ई नापसंदि कयो आहे अल्ला साईं तो केतरनि ई मौक़नि ते कॾहिं अहिड़े क़िस्म जो वरी मां चवंदो आहियां प्रोग्राम डिज़ाइन कजे जंहिंमें हिन क़िस्म जी शयुनि खे असां गॾिजी करे डिस्कस कयूं कुझु मज़हब खे बि सम्झूं कुझु जेको आहे सो पंहिंजे हे जेके असांजा मज़हबी त्योहार आहिनि हिनखे बि सम्झूं अॼोके प्रोग्राम में हिन त्योहार खे थोरो गहराई सां सम्झण जी कोशिशि कंदासीं पर लाइव कॉलर्स खां मां नंढा सवाल पुछंदुमि
0: लाइव कॉल ते सही
1: हिन ईद जे हवाले सां ईद उल अज़हा जे हवाले
0: सां हा कॉमेंट्स

0: पढ़ूं था लेकिन हिते टाइम थियो आहे त असां शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं एतिरो जल्दी ब्रेक
1: माण्हू इन करे दाऊं कंदा आहिनि त
0: हा कमर्शियल काफ़ी आहे चलो ब्रेक वठंदासीं हिन खां पोइ जल्दी वापसी तव्हां मोटी जो तव्हां हिते असां सां गॾु मौजूदु हूंदा प्रोग्राम में खोड़ सारियूं ॿुधव त ॻाल्हियूं कंदासीं हुन खां अलावा अगरि तव्हां असां सां जॉइन थियणु चाहियो था त तव्हां असांखे मैसेज कयो कॉमेंट कयो पोस्ट खे लाइक शेयर कयो ऐं तव्हांजो कुझु देरि बाद कॉल्स वठूं था स्टे कनेक्टेड ॿुधंदा रहो प्रोग्राम ईद की महफ़िल
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: रहे हैं।
1: बस को अल्लाह से माफ़ी दे भाई शैतान
2: होता
1: मतलब हिन जा इलाही सारा फायदा
0: नुकसान भी खोल
1: दुनिया जी कड़ी शे आ जेका हन मोबाइल में कोन इवन ता कुरान पाक भी मां तो कुरान शरीफ भी इन ते पढ़ंदो आया
0: सही
1: गल चवण मकसद आ म्यूजिक हुजे सुठा कम हुजन जेके भी रेडियो हुजे टीवी हुजे हर शइ न हिकड़े स्मार्ट ॾिसण में स्मार्ट आहे पर हिन जा फंक्शन स्मार्ट उहो बि स्मार्ट आहिनि चवण जो मक़सदु आहे हाणे कन ते कंहिंखे न हूंदी आहे हाणे हर कंहिंखे बट टुक टुक लॻी पई हूंदी
2: इहो बि आहे हा बिल्कुल सही
1: आहे इहो तव्हां कूड़ ॻाल्हायो थो मोबाइल मुंहिंजे कन ते हूंदी आहे चओ चओ तव्हां कूड़ ॻाल्हायो
0: घड़ी घड़ी कॉल ईंदियूं आहिनि तव्हां वटि इलाही माशाल्लाह
1: न
0: बाबा कूड़ न ॻाल्हाईंदा अच्छा छा था चवनि किशोर भाई अदी रिज़वान भाई ने आज पिशावरी सैंडल पातो आहे या न पातो अथव
1: अधु पिशावरी आहे अधु सिंधी आहे ॾिठो कोन न
0: शायदि मूं न ॾिठो आहे
1: अधु पिशावरी आहे माना अॻियां आई आहे जेको स्टाइल अथसि थोरो पिशावरी अथसि थोरो
0: चलो केरु माना हिन ॻाल्हि खे बि नोटिस कयो आहे वाह वाह चलो अली रज़ा कलोड़ो
1: पिशावरी अथव त हेॾा तव्हां किथे पिशावर में हूंदा आहियो
0: अच्छा अली रज़ा कलोड़ो बि हमारे साथ साथ ही पैनल ते बि कुझु अवां जा मैसेजिस आहिनि हुननि खे बि ॾिसी वठो मैसेज जल्दी पढ़ूं था जी तव्हां जा कॉल्स आहिनि उहे
1: पैनल वारा जो महांगा मैसेज आहिनि
0: हा जी बिल्कुल अच्छा नूर सिंह तुंहिंजो भाउ तव्हां असांखे पैनल ते बि मैसेज कयो आहे तव्हांजी पूरी फैमिली खे बि ईद जूं मुबारकूं हुजनि
1: और
0: छा था चओ गानो हा बिल्कुल गाना तव्हांखे ॿुधाईंदासीं गानो हिकिड़ो ॾाढो वीआईपी मूं लिस्ट में रखिया पर थोरो सबर कयो पोइ तव्हांखे गानो बि ॿुधायूं था और ये ही जी मर्शद अस्सलाम वालेकुम आपी एंड रिज़वान अलहक आई एम फादिल इलाशारी मेरी तरफ से आपको और पूरी फैमिली को ईद की मुबारक हो आपको भी बहुत मुबारक हो और सभी सुनने वालों को भी आपने मुबारकबाद दी है इरम भी हमारे साथ मौजूद है हेलो इरम विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो हैं रऊफ मक्सी का गाना बिल्कुल जी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे इरम कहती है कि मैं अम्मी के घर से आपका शो सुन रही हूँ मेरी भाभी मेरी सिस्टर अरिबा भी आपका शो सुन रही है सबको वेलकम और सबको ईद की बहुत सारी खुशियां मुबारक हो और मेरे पर खास अब्दुल्ला महरी वालेकुम असलम बाजी सिदरा सर रिजवान आप दोनों को ईद मुबारक
1: अब्दुल्ला
0: और मकसूद मला मेहरापुर से हमारे साथ है हाँ जी बिल्कुल हम दोनों ईद का गोश्त नहीं नहीं गोश्त तो खैर आज ईद का वैसे पहला दिन है तो ज्यादा गोश्त तो भाई मतलब ईद के दूसरे दिन से
1: स्टार्ट होता है
0: सुबह ही खाएं स्टार्ट थियण वारा आहिनि गोश्त पोइ
1: तव्हां राति जो कम तयार हूंदो पाड़े वारनि
0: मोकिलियो हूंदो चलो
1: सिदरा असांजो हिकिड़ो महिरबानी दोस्त आहे असांजो ग़ुलाम हैदर ॾहाणी साहब असांजो वॾो आहे असांजो दोस्त आहे असांजो महिरबानी आहे ऐं पंहिंजो उहो इलाही सारियूं मुबारकूं ॾिए पियो तव्हांखे बि सभिनी ॿुधंदड़नि खे बि ऐं इहो वॾे हिकिड़ो होटल आहे नालो छा अथसि एबीसी होटल आहे चए पियो हिते टिनि ॾींहंनि जो मेलो लॻल आहे अचो त बारबीक्यू जो सिलसिलो
0: आहे
1: गुला गुला लॻल आहिनि
0: यादि तव्हांखे असां वियासीं एबीसी वॾी दावत कई हुई इलाही इलाही ख़्याल रखियो हुयो माशाल्लाह उहो शायदि पहिरियों दफ़ो वियासीं ॿीहर हाणे दावत ॾिनी अथई पोइ
1: शायदि
0: मेलो आहे
1: हा ईद ईद ईद मेलो आहे
0: चलो
1: सो दावत ॾिनी अथई पोइ ॾिसूं था हलूं
0: तयारी जाम तयार
1: तव्हांजी वॾी महिरबानी अदा ग़ुलाम हैदर ॾहाणी साहिबु असांजो ॾाढो महिरबानी दोस्त आहे ऐं चए पियो त फरज़ान बहार जे लाइ चयईं त शायदि हुनखे बि मुंहिंजा सलाम ॾिजो
0: स्पेशल
1: सलाम सिंगर आहे फरज़ान बहार मां को तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदुमि त को गानो असांखे फरज़ान बहार जो को ख़ुशियुनि वारो को ईद टाइप जो को ईअं मिड़ई को भलो को म्यूज़िक वारो हुजे ॿुधाइजो महिरबानी ग़ुलाम हैदर ॾहाणी साहब लख थोरा तव्हांजा असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया हाणे तव्हांजे हवाले
0: एॾो
1: ॻाल्हाईंदे मथे में सूर न पवंदो मां बि अॻे ईअं कंदो हुउमि तव्हां वांगुरु प्रोग्राम माण्हू मूंखां बि इहो ई सवाल पुछंदा मथे में सूर न पवंदो माण्हू त हुन वक़्त मां गुज़रंदो आहे त पोइ हाणे थी ख़बर पए
0: असां बि ज़ाहिर आहे हिन में वेंदासीं पुछंदासीं पाण पाण ॿियनि खां पुछंदासीं एॾो ॻाल्हायो त मथे में सूर न थो पए हलो मुखे ही कडे कडे लगंदा त मां घणो गालांदी पर मथे में सुनाए पवंदो
1: न न माशाल्लाह तां जो गालाइण सुठो आ तां गालाइंदा आयो त असन जे असन सबने के सुठो लगंदो
0: अच्छा इने गाल त एकडी गाल याद अछि कल परसो आंटी असन डे आई हुई त गालायस पई मां अम्मी घर न हुई त माई
1: आंटी हुई त मां मुजो जिक्र न
0: न न वैसे ता
1: हमेशा ता आई बुधाइंदा आयो फलाणी आंटी जे भी दसा बुधंदा आ रिजवान के
0: फलाणी साहब जा सा पेन होया सी न तव्हांजो न ॻाल्हाइण तव्हांजो सही आहे उन हिसाब सां थींदा आंटी आई अमी न हुई त मां हुन सां वेठी हुयमि ॻाल्हाइंसि पई यको ॻाल्हाइंसि पई पोइ आंटी खे निंड झूठा पिया अचनि मां चवां आंटी तव्हांखे निंड अचे त तव्हां भले सुम्ही पओ तॾहिं तूं ॻाल्हाए थी न त मूंखे निंड थी अचे मुंहिंजो ॻाल्हाइण एॾो सुठो आहे भलो आहे त माण्हू ठही वेंदी आहे
1: अमा खे अमर खे चइजां पंहिंजे नज़र वढाई तुंहिंजी घणनि ॾींहंनि खां बुखार न निकितो
0: भली थी लॻा हुन हिसाब सां
1: माशाल्लाह
0: चलो मां घर वञी पंहिंजी नज़र वेठाईंदमि चलो मां हिते हिकिड़ो गानो रखियां इहो गानो स्पेशली मां चवां पई मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि ॾाढो भलो गानो आहे
1: हिन खां पोइ जॾहिं असां ब्रेक ते हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक खां बाद में असां पंहिंजे कॉलर्स खे प्रोग्राम में शामिल कंदासीं ऐं ईद जे मौक़े जे हवाले सां कुझु ईद जे हवाले सां हाल अहिवाल कंदासीं इमड़ी कचहरी कंदा हलंदासीं ऐं हीउ प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बि आहे पंहिंजो
0: वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जे तावन सां
1: ईद जे मौक़े ते इहे प्रोडक्ट ज़रूरु इस्तेमाल कयो सोणा सोणा लॻो
0: बाक़ी

0: वाल भलो गानो ने मां यो हलायो न लाए त ता बुदो ता के यकीन न यो गानो सुठो लगी
1: मैं थोड़ो समझ में आयो भी थोड़ो न भी आयो पंजाबी में होयो तो बराल मड़े कोशिश कई से
0: समझण जी न डाडो सुठो गानो होयो आई बियो इन गाने में जिक्र कारे जोड़े जो मां मुझे ज़हन में ख्याल आता के कारे कलर की ड्रेस पाती है
1: कजल ही गाल बुदी
0: पर ता के कारे कलर की ड्रेस पाती है
1: कारो मन
0: जिंदगी में कदे कारो कलर बदो
1: मन मानो अच्छो हुजे त कारो पाए
0: ये थोड़ी हुंदो आ चवना जे जो कलर थोड़ो मतलब लाइट हुजे त वो लाइट कलर पाए आई जे करे मतलब जे जो व्हाइट कलर आ त वो थोड़ा मना लाइट लाइट कलर पाए
1: मके मना मा डार्क कलर पांजी लाइफ में घट पाता हाणे पाण शुरू किया ना पर सफा एकदम त कारे ते नई दिस ना
0: आस्ते आस्ते मन ये कदम आस्ते आस्ते बढेंगे
1: थोड़ी क्रीम क्रीम लगे
0: जी व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम तमा लगायो आई त डेली बेसिस से व्हाइटिश लवली क्रीम यूज कयो त फेयरनेस क्रीम लाजमी
1: आम तौर ते बुदना ये सर्दी में अणबियों ने मौसम में भी
0: जी बिल्कुल व्हाइट एज लवली क्रीम फेनस के तौर आए डेली कार्य वनो था कमकाज के हिसाब से लगाए वनो स्किन उन में व्हाइट एज लवली में सनस्क्रीन भी एड थियल है तो
1: सुबाने का हणंदुम पर एक शर्त थे इरफान साहब के चंदुम मुझे सैंपल मोकिले मुफ्त
0: वो ये तुम चंदो तो सब लिसनर भी चंदा था सैंपल सैंपल मोकिल
1: चलो इन ऑफर था जो ठीक है हाँ ईद के बाद में तेज प्रोग्राम थन्दा उनमें अस डेली बेसिस से पैं सामीन के इंशाल्लाह ताला मुफ्त वाली क्रीम
0: चलो ये जबरदस्त इन तरीके जो कोई प्रोग्राम डिजाइन
1: गिफ्ट
0: मन साबित रहो इन पूरी
1: क्या चवंदा भी पूरी
0: ये कदें को थो वाक्य
1: डायलॉग जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ जो नहीं कहता
0: वो मैं डेफिनेटली
1: घणो सीरियस भी न वठो
0: वो सोचने लगा दिमाग में प्रोसेस थे क्या
1: नेटवर्क में तो सभिनी के ईद उल अज़हा जो खोड़ सारी मुबारकू हुजन अल्लाह सही तव्हांखे खुश रखे बड़ी ख्याल रखजो उज़ई उज़ई कयो त भारत हुजे
0: अरे चाचा खालिद हमारी शादी चवनि था रिज़वान साहब चाचा खालिद मुखे भी चाचा खाले था कोठियो देन हाउ इज फीलिंग चाचो भी माने शे जो इजहार करे तो
1: जगह कुराड़ी वाली गाल कई मुका दे
0: या वैसे सही गाल है हां
1: बस मुखे चाचा मुखे हाने पे गलती जो है अच्छा सिद्रा चाचा चवे गाल थे दी पर मां भी चा थे दी फोटू तो आए ना चाचे जो भला केड़ो मुखा तो वडो आ ना चाचो
0: चलो बता
1: अदा आए दादो आ मुझा बार ही नंढड़ा है माशा अल्लाह हयाती दे सलमान के गुड़िया के तो अजा नंढड़ा पंज छह क्लास में था पढ़े चाचे जा तो पोटा डोइटा पंज छह क्लास में पढ़ा
0: अर्शद मरी भी हमारे साथ ही तमाम भी अर्शद भाई जो मुबारक हूँ निदा कहती माशाल्लाह हाँ जी आपकी ओपी आज अच्छी लग रही है वैसे ये तो रिजवान साहब ने आपको पहले बता दिया कि आज सिद्रा जाकर घर नजर उतरवाएगा
1: नजर सड़वाइएगा
0: सड़वाइएगा
1: सड़वाते हैं ना चूल्हे पे
0: सही गाल है सही गाल है तो सिंधी आई हूँ
1: आगे चलो चले भाई चले डबल है डबल है नीपा गुलशन डिस्को मस्कान अलासिफ सुरावगोड सुरावगोड सुरावगोड
0: सुरावगोड ते एकड़ी गाल याद आई
1: चाचे फिरोज बुधायो
0: बिल्कुल याद है ना चाचा फिरोज चोकोटी
1: वो मुखा हलो कि
0: बस हल हा अच्छा जायद अली बुर्दी भा तमाम से मोहब्बत हूँ और अब्दुल रजाक हमारे साथ हैं और दर्द दिल हमारे साथ, दर्द दिल का नाम भी वैसे निदा है। अच्छा। तो निदा आपको भी वेलकम करते हैं और उसके अलावा मीर मुमताज अली जतोई हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम, सनाउल्लाह बिरोई हमारे साथ है और हैं जी अली रजा करो कलोड़ो और अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि रिजवान भाई को हमने ज्यादा एड में सुना है, आज लाइव सुनकर सच में ईद थी भाई, अल्लाह
1: मेहरबानी स्मार्ट किशोर।
0: अच्छा फरजाना बाहर जो चलो मां कोशिश कदम चाचा यो गानो हलाइनासी अगर
1: चाचा बुधायो तो पोते यो चाना है ना मौका भी है दस्तूर भी है
0: चलो लिंक तमा थी सके तो शेयर करे वट जो शो तो यो गानो गोलन में को आसानी थी वही थी वेंदी। आदिल हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम आदिल, तमाम जो भी मौजूद हूं प्रोग्राम बुधो पया और हैं जी मोहम्मद आरिफ भाई आपको भी वेलकम है। सो ही वारो गानो बुधो तमा इन गाने का पोए असा न्यूज ब्रेक जी तरफ वेंदासी उन का पोए मोठी जी तमा जी कॉल्स वठण वारा आयो
2: विच

समेत सारी दुनिया में ईद उल अजहा मजहबी जोश ऐसी जज्बे ऐसी मल्हाई पी मिले। सत इब्राहिम तहत अलाह जी राह में जानवर की कुर्बानी जो सिलसिलो भी जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी नवाब शाह में ईद नमाज अदा कई। वजीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। केटीएन न्यूज तरफा नाज़रीन के ईद जो वधायो। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ जो कौम के ईद उल अज़हा जो वधायो। सदर ज़रदारी ईद उल अज़हा सदर आसिफ अली ज़रदारी है तो ईद उल अज़हा अतात इलाही सब्र अख़लाक ईसार जो अज़ीम सबक दिए थी। हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माइल की कुर्बानी मुसलमानों के लिए मशाल राह है। कुर्बानी रुगो मजहबी फर्ज न पर मुकम्मल अख़लाक़ी पैगाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी खुदा के अतान जो दर्स दे थी। आला मकसद के लिए जान ख्वाहिशों मुफाद कुर्बान करण ईमान जो मेरा है। कुर्बानी जो जब इंसानियत ईसार जिम्मेवारी जो एहसास दियारे तो वफाकी घर वजी मोहसिन नकवी स्पीकर कौम असेंबली आया सादिक ए बन पारा भी कौम के ईद जो बधायूं।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: तो कुछ ज्यादा ही जल्दी गुजर रहा है. लेकिन यहाँ पर जो है ना हमारे साथ प्रोग्राम में जो है सर रिजवान भी मौजूद थे और वो जरा आप लोगों की कॉल्स लेने के चक्कर में है कि भाई कॉल्स ली जाए लिसनर्स की.
1: और अल्लाह करेगी कॉल शामिल करने में हम कामयाब हो जाएं, क्योंकि मोबाइल का जो मैं मूड देख रहा हूं तो वो थोड़ा सा आजाद. आज ईद कुर्बान है, बकरा ईद है, ईद उजा है, जो भी नाम आप इसको दे दें, तो खुशियों भरा दिन है, तो गाल बिठाएगी इंशाल्लाह. मैंने जो पूरा बना के रखा था कि हम अपने कॉलर से सुनने वालों से बात करेंगे कॉल पे, तो अल्लाह करे मैं उसमें कामयाब हो जाऊं. ख़वातीन आज़ाद तव्हां खे ईद जूं लख लख मुबारकूं हुजनि. बाबा गोश्त खाओ त थोरो
0: हल्को रखिजो. वैसे तव्हां सुबुह छा खाधो?
1: मां सुबुह चिकन खाधो.
0: चिकन खाधव? बस रुगो चिकन.
1: चांहि वांहि खां पोइ वरी थोरो चिकन हुयो, जेसीं ताईं पाड़े मां को गोश्त वोश्त अचे.
0: सही. तव्हां पाण त सुभाणे कंदो?
1: तव्हां छा खाधो?
0: असां बि चिकन खाधोसीं, छो त अमीअ चयो अॼु चिकन खाओ सुभाणे गोश्त
1: खाईंदासीं.
0: न असां तव्हांजे आसिरे आहियूं.
1: सुभाणे इंशाल्लाह. खपे ओजरी खपे
0: असांखे, चिकन खपे मुर्गीअ जो. वैसे मूंखे गोश्तनि में ख़बर न आहे, पवंदी वॾो गोश्त नंढो गोश्त. बस मुर्गी ई ख़बर हूंदी आहे, त मुर्गी मुर्गी हूंदी
1: आहे. तव्हांखे गोश्त घुराइणो हुजे न, नंढो गोश्त घुराइणो हुजे त पैसा मूंखे ॾिजो.
0: तव्हां वॾो गोश्त वठी ईंदो, फ़र्क़ु छा हूंदो आहे हुन में?
1: फ़र्क़ु हाणे इहो मां ईअं कीअं सम्झायां हिते?
0: सम्झाए सघो था?
1: गोश्त गोश्त हूंदो आहे,
0: वॾो छा नंढो छा?
1: बस पैसा मूंखे ॾिजांइ नंढो गोश्त खाइण.
0: हलो ठीकु आहे. ओके, सो मासूम आहे न मां ॾाढी.
1: अलाह जहिड़ो मासूम सभिनी खे करे.
0: न वैसे मासूम आहियां, वैसे चालाक बि आहियां.
1: अमीअ तुंहिंजो मासूम नालो छो न रखो? मासूम
0: आहे न, बस मुंहिंजो नालो भलो रखियो आहे न ॿिन्ही नबू अमीअ.
1: कंहिं रखियो नालो?
0: सिदरा अमी वार, अमी नानाणनि रखियो, सदफ जेको आहे उहो अबू वारनि रखियो, ॾाॾाणनि रखियो. ॿ नाला, ॿई फैमिलियूं राज़ी.
1: सही आहे ख़वातीन हज़रात. मां असल में इहो सोचियो त मां पंहिंजे सामिन खां इहो सवाल पुछंदुमि त पंहिंजो ईद उल उज़ा ऐं हज़रत इब्राहिम अलाम जो केतिरो जेको आहे सो तालुक आहे, वास्तो आहे. हज़रत इब्राहिम अलाम जो ईद उल उज़ा सां कहिड़ो तालुक आहे, कहिड़ो तालुक आहे? असां आमतौर ते चवंदा आहियूं न त भाउ इहो जेका क़ुर्बानी कंदा आहियूं इहो ई सिर्फ़ु हिन सां रिलेट आहे, बल्कि सिर्फ़ इहो हिन सां रिलेटेड न आहे, इन खां अलावा बि खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं वाकियात अरकान आहिनि जेके हज़रत इब्राहिम अलाम सां रिलेटेड आहिनि. हीअ ईद ईअं सम्झो 90% हज़रत इब्राहिम अलाम जी सुनत आहे. सो बहरहाल हाणे कॉल जी मां कोशिशि कयां थो तव्हां को गानो वानो ॿुधायो त मां
0: गाना त खोड़ सारा आहिनि जेके ॿुधंदासीं. हीउ वारो सॉन्ग आहे, हीउ वारो गानो असां ॿुधंदासीं. तव्हां ज़रा कॉल जी तरफ़ वञो, मां कुझु मैसेजेस ॾिसी वठां थी केरु केरु आहिनि, छा छा चवनि था.

0: 1969 मौजूद हैं बाजी आपको और आरजे रिजवान को और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो. आपको भी ईद की बहुत मुबारक हो. इमरान अली बिरोई भाई आप हमारे साथ मौजूद हैं और इरम आपको भी ईद की बहुत मुबारक हो. और ये है जी सबनी आरजेस के तवहाजी फैमिली के शो बुदड़न के मुलल सलामत ईद मुबारक सदाकत हुसैन मीरानी साहब बचल शामियानी भाई असा के सखर खान ज्वाइन कयो आए सो मोहब्बतूं प्यारे बाजू और तवा आखिर
1: मां दिसा दो अल्लाह करे हले. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम सर. रिजवान के आयो ठीक आयो
1: अल्हम्दुलिल्लाह. शिकारपुर आरो आ छा
0: आओ
2: जी जी जी जी
1: समता न.
2: अस्सलाम वालेकुम बेड़ा सतो.
0: वालेकुम अस्सलाम भाई साला खुश आयो.
2: خیر خیر بھنے ہی تو مبارک ہوں.
0: خیر مبارک ہوں تاں کے بھی جو مبارک ہوں جن
2: خیر مبارک تاں کے بھی مبارک
1: خیر مبارک وا تاں بدایو خیر لو پیا عید وی تے ملایو پیا
2: اج ہاں بالکل سر عید کھا بغیر الحمدللہ.

0: खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। ये दिन है अपनों के साथ खुशियां मनाने का। इसी खुशी में स्पेशल ब्यूटी फेयरनेस क्रीम बनाने वालों की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक फ्रॉम द हाउस ऑफ स्पेशलिस्ट कॉस्मेटिक्स।
1: जदीद गर्मीअ सबबि शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
2: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, खेल महासे और बेजानपन, अब सबको कहें अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
3: आप सुन रहे हैं,
4: आप सुन रहे हैं
3: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
5: सुनते रहो GAFM 90.4।
1: शदीद गर्मीअ सबबि शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
6: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
5: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अब आप सुनेंगे GAFM अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो आहे त दुश्मन जे नापाक इरादन खे हर क़ीमत ते नाकाम बणाईंदासीं। भारतीय सरपरस्तीअ में थींदड़ दहशतगर्दी बर्दाश्त जोगी न आहे। दहशतगर्दीअ जूं गुज़रियूं कारवायूं क़ौम ऐं पाक फ़ौज जे हौसले खे कमज़ोर नथियूं करे सघनि। बलोचिस्तान जे अवाम सां गॾिजी दहशतगर्दनि जो आख़िरी हद ताईं पीछो जारी रहंदो। फील्ड मार्शल ईद उल अज़हा बलोचिस्तान जे ज़िले ज़ू में अॻियनि मोर्चनि ते मुक़ररु जवाननि सां गॾु मल्हाई। आईएसपीआर मूजिबि फील्ड मार्शल जवाननि सां गॾु ईद निमाज़ पढ़ी ऐं खेनि ईद जूं वाधायूं ॾिनियूं। मुल्क जी सलामती, अमन, इस्तेहकाम ऐं ख़ुशहाली जे लाइ ख़ासि दुआऊं। फील्ड मार्शल शहीदनि जी यादगार ते हाज़िरी बि भरी।

صدر مملکت آصف علی زرداری ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जूं क़ौम खे ईद उल अज़हा जूं वाधायूं। सदर आसिफ़ अली ज़रदारी चयो आहे त ईद उल अज़हा अताअत इलाही सब्र अख़लाक ऐं ईसार जो अज़ीम सबक़ ॾिए थी। हज़रत इब्राहिम ऐं हज़रत इस्माइल जी क़ुर्बानी मुस्लमाननि जे लाइ मशाले राह आहे। क़ुर्बानी रुगो मज़हबी फ़र्ज़ न पर मुकमल अख़लाकी पैगाम आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त ईद उल अज़हा सुनत इब्राहिमी क़ुर्बानी ऐं ख़ुदा जे अताअ जो दर्स ॾिए थी। मक़सद जे लाइ जान ख़्वाहिशूं ऐं मुफ़ाद क़ुर्बान करण ईमान जो महराज आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी, स्पीकर क़ौमी असेंबली अयाज़ सादिक, वफ़ाक़ी घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं ॿियनि पारां बि क़ौम खे ईद जूं वाधायूं। फील्ड मार्शल सईद आसिम अली, एयर चीफ ऐं नेवल चीफ जूं क़ौम खे ईद उल अज़हा जूं वाधायूं। आई एस पी आर जो चवण आहे त क़ियामनि फ़ौज मुल्क में मुस्तक़िल अमन ख़ुशहाली ऐं क़ौमी एके जे लाइ दुआगो आहे। ईद उल अज़हा क़ुर्बानी ईमान ऐं यकजहती जी अलामत आहे। पाक फ़ौज मुल्की ख़ुदमुख्तियारी ऐं इलाइक़ाई सलामतीअ जे विफ़ा जे लाइ पुरज़म आहे।

0: असां कयूं जूं ॻाल्हियूं पाण खां सवाइ कुझु न आहिनि। हिन ते का बि मुशावरत नाहे कई वई। कराची सिंध जो हिसो आहे ऐं हमेशा रहंदो। सीनियर सूबेदार शहजीला मेमण जूं तनुजा में मीडिया सां ॻाल्हियूं। शहजीला मेमण आवाम खे ईद अला जो मुबारक ॾींदे चयो त क़ुर्बानी ईद जो मक़सदु वॾो जज़्बो आहे। इख़्तिलाफ़ विसारे क़ौम खे एके जो मुज़ाहिरो करणु घुर्जे। गैस ऐं बिजली जे मसइले ते दाहूं करे थकड़ी पिया आहियूं, पर केर बि ॿुधण जे लाइ तयारु न आहे। पाणी सिस्टम में मौजूद हूंदो त आवाम खे बि मिलंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
5: शदीद गर्मीअ सबबि शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
6: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GAFM 90.4।
7: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 0331252576।
8: जी हा, 2315525786।
7: GAFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

गिले शिकवे मिटाकर मुस्कुराओ ईद का दिन है, गिले शिकवे मिटाकर मुस्कुराओ ईद का दिन है, पुरानी रंजिशों को भूल जाओ ईद का दिन है। वो जिनको बेसबब ठुकराया है दुनिया वालों ने, गले उन बेसहारों को लगाओ ईद का दिन है। अखुवत भाईचारा दोस्ती अखलास फैलाओ, मोहब्बत के दिए घर घर जलाओ ईद का दिन है। वो जिन बच्चों का बचपन कारखाने छीन लेते हैं, वो बचपन फिर इन्हें वापस दिलाओ ईद का दिन है। किसी के वास्ते न नफरत रखो अपने सीने में, जो रूठे हैं उन्हें चलकर मनाओ ईद का दिन है। कम अज कम आज के दिन हो खुशी हर एक चेहरे पर, कम अज कम आज के दिन हो खुशी हर एक चेहरे पर, सभी मिलकर दुआ को हाथ उठाओ ईद का दिन है। गिले शिकवे मिटाकर मुस्कुराओ ईद का दिन है, पुरानी रंजिशों को भूल जाओ ईद का दिन है। जनाब वंस अगेन हम और आप फिर से साथ साथ तमाम सुंदर समातों को अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, ईद उल अज़हा मुबारक। जनाब जी मीर प्रकाश FM 88 की ऑल टीम मेंबर्स की जानिब से, जी FM 88 नेटवर्क की जानिब से, ऑल इंतजामिया की जानिब से, हर पाकिस्तानी को दिल की गहराइयों से, बल्कि हर पाकिस्तानी के साथ साथ आपकी फैमिलीज को भी ईद की ढेरों ढेर खुशियां मुबारक। दुआए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा मुस्कुराता रखे, आप पर रब पाक अपनी रहमत नाजिल फरमाए, और ये ईद जो है आपके लिए ढेरों खुशियां और ढेरों मुसर्रतें और आपके आंगन में ढेरों ढेर कामयाबियां और राहतें लेकर आई हो। और एक और रिक्वेस्ट है कि ईद कुर्बान, इसका मेन मकसद, इसका मेन जो वर्ड है कुर्बान, कुर्बानी, ये जिन वर्ड्स की जो डीप मीनिंग है ना, इसका मतलब जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो तारीखी एक यादगार जो है वाकया, जो हमारी जिंदगियों की बुनियाद है, उससे रिलेटेड है। लेकिन मौजूदा दौर में इस कुर्बान जो लफ्ज है ना, कुर्बान, इससे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अना को कुर्बान कीजिए, हसद को कुर्बान कीजिए, बुग़्ज़ को कुर्बान कीजिए, कीने को दिल से निकाल दीजिए, इन तमाम नेगेटिविटी को आउट कीजिए, और ये त्योहार आपके दिल पे, आपके घरों में और ढेरों ढेर रौनकें लेकर आए। आपके लिए हमारी जानिब से बहुत सारी नाइस विशेस फॉर यू, बिकॉज वी आर फैमिली। आई होप कि बहुत अच्छी सी गुजर रही होगी आपकी, आज आपसे बहुत सारी गपशप भी करनी है, अगर मुझे आप लोग इस वक्त सुन रहे हैं, बहुत से लोग मसरूफ होंगे, लेकिन अगर कोई इस समय मुझे सुन रहा है तो उसे जो है आज हम अपने लिसनर से पूछने वाले हैं कि आप मुझे बताएंगे वो कौन सी स्पेशल डिश है बकरा ईद की, जिसके बारे में आप दावे से कह सकते हैं ये वाली डिश मुझसे अच्छी कोई भी नहीं बना सकता, या मेरी अम्मी से अच्छी ये वाली डिश कोई भी नहीं बना सकता ऑल वर्ल्ड में, या मेरी बहन बहुत ही लजीज ये डिश बनाती है, ऐसा जायका किसी के हाथ में नहीं है, ये हमारी बेगम जो है वो डिश जो बनाती है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि सेम वैसे ही जायके वाली डिश कोई और बनाए। ये आज का टॉपिक है। और बताइए कैसी गुजरी है आपकी ईद? और आई नो वेरी वेल, मैं नजूमी तो नहीं हूँ लेकिन तुक्का लगाती हूँ बहुत ही बेस्ट गुजर रही है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ईद का जो मेन मकसद है प्लीज उस पे थोड़ी तवज्जो कीजिएगा। डीप फ्रीजर और फ्रिज भरने के लिए ईद नहीं आती है, ये उन मुस्तहिक लोगों के लिए आती है जो ऑल एयर जिंदगी की गाड़ी घसीटने में बहुत ज्यादा तगड़ो में मसरूफ होते हैं। तो असल मुस्तहकीन को प्लीज अच्छे से गोश्त दें, इतना दें कि एक टाइम कम से कम वो बना के खाएं, और आपको ढेरों ढेर दुआएं दें, साफ सुथरा गोश्त दिया करें, वो ही वैसा ही सेम चीज दें जैसी आप अपने लिए पसंद करते हैं। तो मेरी जानिब से ये पहला गीत आप सबके लिए, स्पेशली किड्स के लिए।

0: आपको वेलकम भी कहूंगी अपने प्रोग्राम में। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपके घर की वो स्पेशल कौन सी डिश है ईद उल अज़हा की, जो आप समझते हैं कि ये वाली डिश है ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कोई और हमसे ज्यादा अच्छी और लजीज बनाए। तो ये आज आपने मुझे बताना है, ओके। और आपकी कॉल्स के लिए आपको डायल करना है 03133615688। और SMS के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में लिखना है MP की एक स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना कर देना है 8881 पर। आपकी कॉल्स की जानिब करते हैं मूव। अस्सलाम वालेकुम। ओ माय गॉड, चलिए जी, आपकी तो कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है, ओके। और नेक्स्ट कॉलर को मौका देंगे अपने प्रोग्राम में शमूलियत का। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, माजरत कहूँ, आपकी आवाज, खूबसूरत आवाज जो है वो हमारी समातों तक नहीं पहुँच पा रही। आप जो भी कोई हैं आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है? अदा भलीकार चौथा तवा के, ईद मुबारक। क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से? चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, ओके। और जनाब, मैंने पूछा है वो कौन सी डिश है, खुसूसी डिश ईद उल अज़हा की, जो आपके यहाँ बनती है, आप कहते हैं इतनी अच्छी और लजीज डिश किसी और के बस की बात नहीं है। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम,
1: वालेकुम सलाम बाजी, क्या हाल है?
0: अल्लाह का शुक्र, वेलकम कहूंगी अदा, ईद मुबारक। कौन बात
1: कर रहा हूँ?
0: खुश आमदीद कहेंगे आपको, क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से?
1: बाजी, टॉपिक के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं एक बता रहा हूँ
0: जी।
1: तो सिपरी हमें कुपत कीम करियो, सोलन गरन लियन मानो जन मरियो, तेसी कुर्ब करियो, जैसी जेरा आयो जान में।
0: गुड हो गया, बहुत शुक्रिया। आदाब, जिंदा होती है क्योंकि फिर कब्र पे जाके रोने से और बैन करने से जब वो दुनिया से रुखसत हो गया बंदा या बंदी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीने दो और जियो। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहेंगे अदा, कौन बात कर रहा है? अदा, ईद मुबारक, क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से? थैंक यू, क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से? चले, ठीक हो गया दा, बहुत शुक्रिया, आप शाम ले प्रोग्राम हुए, थैंक यू। चलिए जी, आपकी कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गई है, ओके। गोठ बीसरे कानवर मरी भलीकार चौथा दा तमा के। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम अदी, जिलूरी का खाले क्लाशरी गलाएगा।
0: अदा, ईद मुबारक, क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से? थैंक यू, टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे आप?
2: अभी टॉपिक के बारे में बकरे के गोश्त की बिरयानी मना मुझे भेड़ तमाम सुखी खाई है, देखो आऊँ तमाम सुखे तो मुझे खाई दो आया दोस्तों के। ईद मुबारक के अजीज दरबार अजीज कुर्बानी खास के भी गुलाम रसूल।
0: ठीक हो गया, ओके जनाब, ईद मुबारक ऑल ऑफ यू, अ वेरी वेरी स्पेशल, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम मूव करेंगे एक छोटे से तशहीरी वक्फे की जानिब और ब्रेक के बाद आपको अगेन ज्वाइन करते हैं।

0: सदा हंसते रहे जैसे हंसते हैं फूल, दुनिया के सारे गम सबको जाए भूल, चारों तरफ फैलाए खुशी पर।
1: वो 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरों अख्तियार कन, गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो, बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तो पोए GFM 90.4 मातली बदी निक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
4: 3125257 86।
5: जी हाँ, बुड़ी 331 5 5 786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, अपना शहर, अपना

0: जरा दिल की जलाओ के ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ के ईद का मैं गुलनास, तमाम सुनने वालों को नमकीन ईद उल अज़हा की तीखी तीखी खुशियाँ मुबारक।
1: कश्मीर जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 मिनट ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध समेत समूरे मुल्क की खुशहाली सलामती दिलाए खास तो आऊं KTN न्यूज तरफा आलम इस्लाम के ईद जो थोड़ा सारी वादा है।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

बहुत ही प्यारा सा गीत मैं आपको सुनवाने वाली हूँ। ये वाला गीत जो है ये सदाबहार गीत है और मोस्टली जो है सिर्फ और सिर्फ मैं ईद वाले दिन ही आपको सुनाती हूँ और सुना सकती हूँ, क्योंकि इस गीत की जो शायरी है ना वो स्पेशली मुंसलिक है ईद के हवाले से। तो जो लोग ओल्ड म्यूजिक लाइक करते हैं, शबनम और नदीम पे पिक्चराइज बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक और ट्रैक के बाद ब्रेक को। ब्रेक के बाद अगेन आपको ज्वाइन करते हैं। वंस अगेन दिली ईद मुबारक।

लहजा हम आपको की खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। रब्बे जलील से दुआ है ये ईद हम

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ बी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदी निक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: थैंक यू, आपने टॉपिक को फॉलो किया। लाइव कॉल नंबर है 03136615688। कौन सी स्पेशल डिश है बकरा ईद पे जो आपके यहाँ बनती है और उससे ज्यादा लाजवाब कोई भी नहीं बना पाता? चले जी आपकी कॉल श्यामले प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम बाजी।
0: वालेकुम अस्सलाम अदा, कौन बात कर रहा है? वेलकम कहेंगे अदा आपको, ईद मुबारक। जी क्या कहेंगे सब सुनने वालों से? ठीक है अदा, सबनी पारा वालेकुम अस्सलाम। और जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? दिल की गहराइयों से सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। निमरा सेम टू यू, चंदा आपको वेलकम कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ढेरों ढेर बेस्ट विशेज, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। और ये तो

0: विसरे घोठ खानवर अली मरी जी तरफा दोस्तन के ईद जू मुबारक हूँ। ओके नेक्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम। ओ माय गॉड, चलें तो आपकी तो कॉल ही कट गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है आपकी कॉल। गोठ पुन्नू खान पवर खान रुस्तम अली पवर अदा तवा के भी ईद जू मुबारक हूँ। ईद मुबारक हाय गुल, कैसी हो? आपकी हर बात मुझे अच्छी लगती है और गुल की खुशबू में जैसे बहार आ गई हो, आप हमारे साथ होती हो, हर चीज अच्छी लगती है। अस्मा लगा रही, थैंक यू चंदा, आपको भी ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका, आप शामली प्रोग्राम हुई। और गोठ आलम खान जरवार से मोहम्मद अजीज जरवार बाजी ईद मुबारक सब सुनने वालों को, के जनाब सबकी जानिब से आपको भी सेम टू यू। नेक्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब, वेलकम कहेंगे भाई, कौन बात कर रहा है?
1: नूर मोहम्मद मरीज।
0: चले जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको, ईद मुबारक। क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से? बकरा ईद की वो कौन सी स्पेशल डिश है जो आपके यहाँ बनती है, उस जैसे अच्छा कोई भी नहीं बना सकता?
1: वो मेरी बहन है।
0: व्हाट?
1: बहन, बहन जी।
0: बहन?
1: बहन है वो।
0: चले ठीक है अदाब, बहुत शुक्रिया आपको। मुझे लगता है मैं बहुत मुश्किल बोलती हूँ, आपने तो डराई दिया मुझे आपने। ओके नेक्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: ओके वेलकम कहेंगे आपको जनाब, कौन बात कर रहा है? दा ईद मुबारक।
1: खैर मुबारक बाकी आपको और एसएम की पूरी टीम को हमारी तरफ से ईद मुबारक हो।
0: थैंक यू अदा, बहुत शुक्रिया सबकी तरफ से, एफएम वालों की तरफ से, लिसनर्स की तरफ से भी। क्या कहेंगे सब सुनने वालों को?
1: मैं अपना तारुफ कराता चलूं गोठ पुन्नू खान पावर से रुस्तम अली पावर।
0: वेलकम कहेंगे, क्या कहेंगे अदा सब सुनने वालों को?
1: सबको ईद मुबारक कहेंगे और मैं ये कहूंगा कि ईद बकरा ईद थोड़ा गोश्त कम खाया करें।
0: हाँ जी, हाथ होला रखें ताकि बीमार ना हो आप लोग।
1: गर्मी है और फरवरी गोश्त ये मसला हो जाएगा तबीयत के साथ।
0: चलें अपना ख्याल रखिए, आप भी हाथ हौला रखिएगा। ओके और अस्मा थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ बहुत ज्यादा और ओवर ईटिंग तो वैसे ही प्रॉब्लम्स का जो है गढ़ है, तो एहतियात अच्छी होती है बजाय इसके कि फिर डॉक्टर्स के यहाँ भागे। नेक्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो वालेकुम सलाम।
0: जनाब वेलकम कहेंगे, ईद मुबारक, कौन बात कर रहा है?
1: समीर बात करो मोरे।
0: खुश आमदीद कहेंगे अदा आपको, ईद मुबारक। क्या कहेंगे सब सुनने वालों से?
1: सब सुनने वालों से कहेंगे
0: क्या कहेंगे?
1: ईद मुबारक।
0: चलें सबकी जानिब से बहुत शुक्रिया आपको, आप जो है शामले प्रोग्राम हुए, थैंक यू। ज्यादा जो है आपको हम जहमत नहीं देंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त करीब करीब है। ब्रेक का पोए अगेन तव्हां खे ज्वाइन कंदासीं, तव्हां सभिनी खे ईद मुबारक।

0: खास की हो तो आवाज भी मीरपुर खास की है। सुनते रहो GFM 88 मीरपुर खास की।
1: कुरान समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: क्यू फ्रॉम जी मीरपुर खास FM 88।
3: मिर्च मसाला ईद।

हसरत है तुम्हारी दीद करे, हसरत है तुम्हारी दीद करे, तुम आओ तो हम भी ईद करें। कुछ देर तो दिल को चैन मिले, कुछ रोज तो मन के फूल खिले। कहते हैं ईद की आमद है, तुम आओ तो हम भी ईद करें। जब गम के बादल छाए थे, उस बार भी तुम ना आए थे, इस बार भी तुम ना आए हो। सब दुश्मन ये तनकीद करें, तुम आओ तो हम भी ईद करें। माना कि हम दीवाने हैं, सब बातों से अनजाने हैं, जब अपने ही बेगाने हैं, क्या गैरों से उम्मीद करें। तुम आओ तो हम भी ईद करें, तुम आओ तो हम भी ईद करें। वंस अगेन वेलकम कहूंगी अपने तमाम सामईन को जी मीरपुर खास FM 88 के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं नमकीन ईद की तीखी खुशियाँ। अमर रमेश कुमार खत्री लिखते हैं, बकरा ईद मुबारक कबूल हो। सेम टू यू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। लतीफ चनेसर गुट कराची से अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर सादिक शेख, शुगर शंकर गुल शर्मा, बिरयानी वाले, अरे वाह, बिरयानी वाले भाई भी आ गए हैं प्रोग्राम में। वेलकम कहते हैं आपको जनाब, बहुत शुक्रिया।

हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अक्सर आप अच्छे से तैयार हो जाएं, और ख्वातीन की तैयारियां माशाल्लाह जब तैयार होती हैं तो मतलब अच्छा भी लगता है। लेकिन ईद उल अज़हा वाली जो ईद होती है ना, मोस्टली ये हमारी जो ख्वातीन है ना, उनकी ज्यादातर जो है वो आई थिंक किचन में ही गुजरती है, सही है ना। मर्द हजरात पे भी जिम्मेदारी होती है गोश्त कटवाना, फिर बांटना, वो भी बिजी होते हैं कामों में, और ख्वातीन जो है वो खाना पकाने में मसरूफ होती हैं।

0: अच्छा जी, कुछ कॉल्स आपकी ले लेते हैं। ईद की ढेरों ढेर मुबारकें आप तमाम सुनने वालों को जी एफ एम 88 नेटवर्क की जानिब से। और देखते हैं लाइन पर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: वेलकम कहेंगे निदा, ईद मुबारक।
1: खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो।
0: थैंक यू। कैसी गुजरी है आपकी ईद?
1: बहुत अच्छी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी।
0: अच्छा, कोई कुकिंग की, अम्मा की हेल्प की आपने या सारी तैयार शुदा डिशेज खाने में ही आपकी ईद गुजर रही है?
1: मेरी ईद तो तैयार शुदा खाने में गुजर रही है।
0: ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अम्मा की हेल्प
1: और बड़ी बहन बना रही है ना।
0: नहीं, आपकी भी थोड़ी बहुत।
1: वैसे भी मुझे चिकन में से कुछ अच्छा बनाना नहीं आता ना, तो मम्मी और बड़ी सिस्टर वो बनाती हैं।
0: चले, ये अच्छा है काम से जान छुड़ाने का कि भाई मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं होता ना, सिस्टर बहुत मजे का बनाती है। ये
1: मैं मस्के लगा रही हूँ कि मेरे हाथ का अच्छा नहीं बनेगा, मैंने कभी बनाया नहीं है। फिर वो कहती है चले रहने दे।
0: हाँ, वो कहती है कि हमारे हाल पे रहम करो, बस तुम रहने ही दो, तुम बैठी रहो, हम खुद बना लेंगे, है ना?
1: हाँ जी, आज ईद का दिन है ना, तो सजते सवरते रहो।
0: ओके, क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से? आपके घर की कौन सी डिश है ईद उल अज़हा की जो आप समझती हैं आपके घर की ही बेस्ट होती है, कोई और इससे अच्छी बना ही नहीं सकता?
1: चिकन कढ़ाई।
0: अरे वाह, कढ़ाही। ओके, और ये कौन बनाता है?
1: सिस्टर है ना, बड़ी सिस्टर है ना, वो बनाती है, बहुत अच्छी बनाती है।
0: चलें जी, आप इंजॉय करें अपने अपनों के साथ। अलीजा को भी हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार, बेस्ट विशेज, बहुत शुक्रिया आपका निदा।
1: और वो आपको ईद मुबारक दे रही है।
0: थैंक यू, सेम टू यू, बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज।
0: ओके जी, और ईद हमारे तमाम पाकिस्तानियों की अच्छी और बेहतरीन गुजरे, मेरे तमाम सुनने वालों की भी ईद अच्छी गुजरे, बगैर नाम के जो मुझे मैसेजेस पे ईद मुबारक कह रहे हैं उनकी भी ईदें अच्छी गुजरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? खुश आमदीद कहेंगे आपको, ईद मुबारक।
1: खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक।
0: थैंक यू। ये बताइए, आज क्या कुकिंग की है आपने?
1: आज हमने बकरा बनाया है।
0: अरे वाह, बकरे की डिश, कौन सी डिश बनाई है? बकरा पूरा तो नहीं बनाया होगा, कोई डिश बनाई होगी ना? ओ माय गॉड,
1: बस बकरे की डिश बनाई है।
0: चलो अच्छी बात है, एंजॉय करो। सब सुनने वालों को चले, सब सुनने वालों को क्या कहेंगी?
1: बस इतने में यही कि सब इसके साथ सबसे अच्छी तरह मिले, सबको गोश्त बांटे।
0: फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं भरे, वापडा वाले आपके वो गोश्त खराब कर देंगे लाइटें बंद बंद करके, कोई फायदा नहीं है।
1: यही है ना, अपने फ्रिज में रख देते क्या फायदा, वो तीन तीन महीने खाते हैं, फायदा क्या? गरीब तो दे
0: दुआएं लगेंगी ना, दुआओं से बेड़ा पार हो जाता है, ये बात सब समझेंगे। बहुत शुक्रिया जी,
1: समझाना चाहते
0: हैं। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।
1: थैंक यू।
0: हमारे लिसनर जरूरत से ज्यादा समझदार है। आई होप के जो हम समझाना चाह रहे हैं जो है वो आप लोग यकीनन समझ रहे होंगे। अक्सा कहती हैं गुल गर्मी तो है, अब क्या करें। बिल्कुल, और किचन की कुकिंग वगैरह का काम सिस्टर का है, और भाभी हैं वही काम करती हैं, फिर मैं क्या करूं कुकिंग करने का? वैसे भी नहीं नहीं, प्लीज आप कुकिंग मत करना, उनकी ईद अच्छी होने दे अक्सा, प्लीज। खबरदार आपकी चल गई। तो नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम। भाई आप एक काम करिए, मुझे रेडियो पे सुन लें जो आपने लाउडली खोला हुआ है, ठीक है? अब मैं जो है वैसे भी इजाजत लेने वाली हूँ, जब भी आप लोग कॉल्स पे आते हैं हम कहते भी हैं कि प्लीज रेडियो ऑफ कर दिया करें, आप समझती नहीं है हमारी बात। हम पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, उर्दू नहीं बोलते, किसी और लैंग्वेज में बोलते हैं लगता है। वेल जनाब, हतुल इमकान कोशिश थी आज आपकी कॉल्स ज्यादा से ज्यादा ले, मैंने कोई भी सेगमेंट वाले जो है ना इसमें एडिशन नहीं की है। एक नजर जो है हम FB पे भी करते चले, हाँ जी चले, फेसबुक के भी तकरीबन तमाम ही मैसेज हम शाम ले प्रोग्राम कर चुके हैं, और कोशिश करनी है आपने ईद को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गुजारना है। बेहतरीन अंदाज में तब ईद आपकी गुजरेगी जब आपके इर्द गिर्द रहने वालों की भी ईद

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हथियारबंद फौजन के सरबराहन के ईद जो वाधायूं डिनू। हथियारबंद फौज के पेशावरणियों सलाहियतन कौमी सलामती लाय खिदमत तोड़ी कुर्बानियों की सारा कई। मुल्क की सलामती तरक्की खुशहाली लाय दुआओं भी घुरू। वजीर आजम शहबाज शरीफ ईद के ढीह से फर्स्ट डिफेंडर ऑफिसर्स जवानों के डेटा पेश कर फौज के पैंजे बहादुर सिपाहियों पाक फौज की कुर्बानियों से फख्र है। सर्विसेस चीफ्स ईद जो वाधायूं डण वजीर आजम जहा तौरा मनिया उन अजब जो इजहार किया पाक फौज वतन के दिफा सलामती हर वक्त तैयार है।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: शदीद गर्मीअ सबबि शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
0: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।
2: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: एक क्यों?
1: बस
0: अच्छा बस अच्छा ये बताओ कि आप क्या इरादा है, आप उठ गए हो शाम को, कहाँ जाना है, दोस्तों के घर, रिश्तेदारों के घर?
1: जी मैं जाऊंगा।
0: अच्छा गुड है, गुड है। पता है मैंने क्या किया, मैंने तो कल ही सबके घर होकर आ गया, मैंने कहा भाई मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, मैं ईद वाले दिन बिल्कुल नहीं आऊंगा क्योंकि मैं सोऊंगा और बहुत गर्मी है।
1: दोस्तन के याद करना आया हूं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद किया दोस्तन के।
1: आप लक्ष्मी जो भी सुन रहे मेरी तरफ से
0: थैंक यू। आसिफ सावल आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू। जी जनाब हमारे साथ आसिफ सावल फ्रॉम मोरो, और जनाब आप भी हमें कहीं से भी सुन रहे हैं तो आप हमें कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: के रता सर सबनी सा करो
2: सोना साई भाई कल जत्ते को गला केटी शाबेले का
0: केटी शाबेले वाले सबनी दोसन के हैं जायद भाई के ईद मुबारक।
2: अलहमदुल्ला प्यारा बात तां के ईद मुबारक तां जे पूरे टीम के जेके भी दोस्त बुदन दाई दन लख लख मुबारक।
0: थैंक यू अदा आसिफ नाल बुधायो
2: जायद जतोई
0: जायद भाई बुधायो केटी शाबेले वारन ईद किए कई आई
2: माशाल्लाह सुठो त प्यारा बात सुठी ईद गुजरी शुक्रा मालिक जो
0: माशाल्लाह माशाल्लाह ना गुजरी ना बड़ी प्यान बा
2: अजो
0: भी न गुजरे अजो भी हथ पे असल में शहर में तो शाम जो ढी शुरू थो शहर में तो शाम जो ढी शुरू थो ना असो अच्छा माशाल्लाह तुम खफुल आया हो घुमी फिरी आया हो खाई पी आया हो
2: जी जी बिल्कुल
0: वाह वाह गुडा गुडा यार जबरदस्त जायद भाई ये बुधायो तो जो हाँ मैं गाना तो प्ले किया नंबर मोलाई जो यो कें जे नाले सा करण चाहियो
2: असा के दो पला बुधायो ता तो चोंदा रे
0: केडो केडो
2: असा बुधायो जो जला चांद जो इन ईद ते वतनो प्यारो फिरिन आयो सोनो सजन आयो जें जी जुदा यो ने कारो में बैठ पातो
0: ईद आ गई ओ मेरा यार नहीं आया भलाईया सूर सबनी के छोंदा है त ईद अची वई असा जो यार ना आयो असा जो प्यार ना आयो छो भला
2: बस दिसो तारा जो रमण ले काले लगे बा दोस्त दिला तो दे जों चाती ने दबरा ए कला बुदरा पोना दुखा
0: ने मुजी गाल त बुदो दुनिया वनी चंद्र ते पोती असा के पने यार जी फिकर त यार कोन आयो ने भागो कम हुंदा सको
2: जे ये ला दो सारे
0: असा इन सिग्नल में निकरन ता त कोई एकदम दंदा से ना अच्छा ठीक है मां बुधाएं जी पूरी कोशिश तो क्या कहें देना
2: पर तमा जे नाले कंदा आ जे के दोस्त बोलना दे के सब न दोस्तन के ईद मुबारक जे के बदना खास कर ता के तो जतिन के
0: थैंक यू सो मच जायद भाई पांजो खास ख्याल रख जो
2: बड़ी मेहरबानी कला
0: अल्लाह हाफिज़। जी जनाब वेलकम बैक वंस अगेन आफ्टर द कॉल। और जनाब ये मुझे ये फंडा समझ नहीं आ रहा था, मुझे ये फंडो समझ में नहीं अचे। तो जनाब जी ईद इंदी आ आशिकन जा टका हुंदा न माना हर जको आशिक हुंदो आ सैड हुंदो आ कपड़ा भी कोन पाइंदो आ यार न आयो अरे भागो काडे मरी वियो यार कोई कम हुंदस कोई कार हुंदस सौ जान में कमन वो कम करे पोइंदो न बाबा न असन यार अज अचे बाबा टे डी दन के भी डी अचे सके तो। अस्सलाम वालेकुम। होए होए होए आते ही ड्रॉप हो गई पर कोई गल नहीं है जनाब इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अस्सलाम वालेकुम। अदा जानी ईद मुबारक। थैंक यू मुझा मिठा केर पे गलायो किथा पे गलायो अली नवाज पिताफी तां जे गोठ वारन ईद किया कई आ तां किया कई आ जबरदस्त जबरदस्त मजे की गाल ईद सुठी गुजरी है गुजरे थी बी बिया भी गुजारिंदा काते घुमण फिरण वे हो। अच्छा सही सही सही सही गर्मी थी पई है पांजो खास ख्याल भी रखो कुछ थदा मशरूबात भी पियो कोल्ड ड्रिंक्स पियो सॉफ्ट ड्रिंक्स पियो तो जी तक गर्मी न लगे रुमाल वुमाल वेड़ो वनो बाबा गर्मी इलाही पई आ हाँ गर्मी इलाही याद आ गर्मी वाकई इलाही याद। अच्छा यो यो बुधायो पिताफी भात गानो बुधायण वारो आया मुनवर मुलाई जो केंजे नाले था करण चाहियो सिर्फ ओके अदा ओके हियर तो प्ले किया गानो ठीक है दा थैंक यू। जी जनाब मुनवर मुलाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि जनाब हमें भी प्ले किया जाए तो हम प्ले करते हैं बिल्कुल क्योंकि हमें अपने लिस्टनर्स अपने दोस्तों अपने कॉलर्स को भी अटेंड करना है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: कौन हमारे साथ?
3: दुआ कंवल।
0: दुआ कंवल
3: जी।
0: दुआ कंवल ईद मुबारक हो आपको।
3: खाली मुबारक
0: बाकी गोश्त माँ भी कौन खड़ी आयो गोश्त बोस्त माँ भी तो कौन खड़ी आयो

0: मरी वियासे बस पान डुकण लाइ सिकूं था किथो कोई डुकड़ अचनि तव्हांखे असां डुकण जे बदिले असां तव्हांखे गानो ॿुधाईंदा तव्हांजी फरमाइश जो अच्छा कहिड़ो कयसि गानो न ॿुधायो मां मरी वियासे ईद जे ॾींहुं बि मयारूं अच्छा हाणे कहिड़ो गानो ॿुधणो अथव ॿुधायो हैलो दुआ कमल हेलो ओ शिट दुआ कमल की कॉल होगी ये ड्रॉप पर कोई बात नहीं है हम लेते हैं शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम के रदा असां सभिनी सां गॾु अब्दुल वाहिद जतोई
1: जी अब्दुल वाहिद
0: वाहिद भाउ कहिड़ा हाल चाल आहिनि ईद मुबारक थैंक यू सो मच ईद जो ॾिहाड़ो कीअं गुज़रे थो तव्हांजो मज़ेदार
1: जी जी
0: जबरदस्त इहो ॿुधायो गानो थो ॿुधायां कंहिंजे नाले था करणु चाहियो जलाल चांडो ॿुधाईंदोमांव पर हींअर जेको आहे फरमाइश आई आहे मुनवर मलाई जी थैंक यू सो मच वाहिद भाउ हमारे साथ जना वाहिद भाई और वाहिद भाई के बाद अब लगता है गाना प्ले कर ही दें क्योंकि गाना हम जब तक प्ले नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आने वाला हम मुनव्वर मलाई प्ले कर चुके हैं और जनाब आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो गोश्त मुस्तहिक अफराद तक जरूर पहुंचाएं और इसके साथ साथ अपने गली मोहल्ले को भी साफ रखें जिस एरिया में आप कुर्बानी कर रहे हैं वहां पे कोई आलाइश ना हो कोई खून ना हो और सब कुछ सफाई करें ताकि आप एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें।

0: सजा के पुर मुसरत मौके पर जीएसएकर एफएम 88 की जानिब से
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक
2: बेमिसाल लोगों के लिए बेमिसाल ऑफर मिनट्स तो और 1000 जैज मिनट्स और एसएमएस सिर्फ 250 रुपए के लोड में अभी डायल करो *9277# और बेमिसाल हफ्ता गुजारो विद जैज मेरी सुपर पावर ये ऑफर मखसूस इलाके
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: आई। हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331786।
5: जी हाँ, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: ये मोहब्बत का सास GFM 88 की आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: अब हफ्ता वार बेमिसाल प्लस ऑफर के साथ मिले 5GB डेटा और 10GB व्हाट्सएप 60 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और तो और 1000 जैज मिनट्स और SMS सिर्फ 250 रुपए के लोड में अभी डायल करो *9277# और बेमिसाल हफ्ता गुजारो विद जैज मेरी सुपर पावर
3: ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है
2: बेमिसाल लोगों के लिए बेमिसाल ऑफर अब हफ्तावार बेमिसाल 10 मिनट पर SMS सिर्फ 250 रुपए के लोड में अभी डायल करो *9277# और बेमिसाल हफ्ता गुजारो विद जैज मेरी सुपर पावर
3: ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है
4: मे दिस ईद ब्रिंग यू एंडलेस ब्लेसिंग्स

0: Happy Mubarak. Aghaki, check for the transmission.
1: With Masala Eid. Eid.
0: बिहारी पसंदे बनाने के लिए तरकीब नोट कीजिए। इसके लिए जो अज्जा दरकार हैं, पसंदे एक किलो, दही एक पाव, कच्चा पपीता दो खाने के चमचे, साबुत मिर्च 7 से 8 अदद, प्याज 2 अदद दरमियानी साइज की, अदरक पिसी हुई 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, लीमू गार्निशिंग के लिए गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जायफल जवत्री आधा चाय का चमचा, सरसों का तेल आधी प्याली, कोयला 1 टुकड़ा दहकाया हुआ और ऑयल 2 खाने के चमचे। बिहारी पसंदे बनाने की तरकीब नोट कीजिए। सबसे पहले पसंदों में दही, सरसों का तेल और तमाम मसाले पीस कर मिला दें और 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। एक पतीली में कुकिंग ऑयल डालकर गर्म करें और मसाला लगे पसंदे इसमें डाल दें। अब इसको 20 से 25 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं, तो ढकना खोलकर पानी खुश्क होने दें। जब पानी खुश्क हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। अब प्याज का छिलका लेकर इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालें और उसमें दहकता हुआ कोयला रखकर धूनी दें। लीमू के साथ गार्निश करें। मजेदार बिहारी पसंदे रायते के साथ तनावल फरमाएं।
2: खाना तैयार है।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GAFM 90.4।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
7: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
7: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
6: 0331252576।
7: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: के ही ॿुधायो ईद जो ॾिहाड़ो कीअं गुज़रियो थो तव्हांजो?
1: तमामु गुज़र सर, तमामु माशाल्लाह गुज़री आहियो तव्हांजो प्रोग्राम रोटी जा प्रोग्राम ॿुधो पिया पंहिंजा प्रोग्राम ॿुधो पिया।
0: वाह वाह वाह वाह, ॻोठ हुजे, उताक हुजे, थधी हवा हुजे, ॿियो छा खपे? गर्मी छॾे आहे
1: बिल्कुलु। वाह वाह, हाणे माशाल्लाह वीह जी मौसम आहे, माहौल बि भले आहे।
0: अच्छा, हिते त सफ़ा टाइट गर्मी लॻी पई
1: आहे। जी सर जी।
0: अच्छा त मां तव्हांखे गानो ॿुधाइण वारो आहियां। सॼण ॿई गॾु हुयासीं भाई जलाल चांडियो, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो? हलो जकरानी भाउ, गॾु वियो? हेलो, कॉल त हले थी पर तव्हांजी आवाज़ नथी अचे। असां सभिनी सां गॾु आहिनि शब्बीर हुसैन भुट्टो, चवनि था ओके ईद मुबारक भाई। सिकंदर अली चवनि था सुबुह से जॉब में बिज़ी हूं आज न्यूज में। ओके जनाब, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आगे जबार को मैंने पार्टी का कहा था तो कहते हैं इन्वेस्टर बाबर साहब, बिल्कुल जनाब आप मना ले उनको और अच्छी सी पार्टी अरेंज करें। जकरानी भाई हमारे साथ ही, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, और अब लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। खैर मुबारक मुझा प्यारा भा, नालो चाहे किथा पिया गलायो? अच्छा अच्छा अच्छा, कहिड़ा हाल चाल नदा तव्हांखे? ईद मुबारक हुजेव। थैंक यू। मूंखे लॻे थो त हाणे तव्हां निंड मां उथे आयो।
1: न न सर, निंड मां
0: अच्छा अच्छा सवेल जो उठा आयो। त ईद जो ॾिहाड़ो तव्हां कीअं था गुज़ारियो? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। इहो ॿुधायो जलाल चांडियो जो गानो ॿुधाइण वारो आहे, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो?
1: जलाल चांडियो
0: जो। हा, इलाही फरमाइश आई आहे त जलाल चांडियो ॿुधायो। अच्छा अच्छा जी। जी जी सही
1: जी जी। मुबारक हुई।
0: थैंक यू, थैंक यू सो मच। माना असांजी पूरी टीम खे तव्हांजी तरफ़ां मुबारक।
1: जी जी जी,
0: थैंक यू। तव्हांखे बि असांजी पूरी टीम जी तरफ़ां ख़ैर मुबारक अदा, ईद मुबारक बि। थैंक यू जी जनाब। अब हम चलते हैं एक जबरदस्त सॉन्ग की जानिब। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हादी किंग 47। हादी किंग 47 हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त हमारा शो सुन रहे हैं। तो हादी किंग 47 को हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी ईद। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराते रखे। हादी किंग साहब 47, आप हमें सुनते रहें और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। और जलाल चांडियो का गाना जनाब हम डेडिकेट करते हैं हादी किंग 47 को और अपने तमाम दोस्तों को। तो सुनिए और हमारे

0: अब आप सुनेंगे GAF नेटवर्क पर KTN न्यूज़
1: लिए। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।

0: फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर रिदुलजा बलोचिस्तान के जिले सोप में अगे मोर्चन से मुकर्र जवान से गड मलाई मुल्क की सलामती ए खुशहाली लाए खास दुआं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है दुश्मन के नापाक इरादन के हर कीमत से नाकाम बनाईंदी। भारतीय सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी बर्दाश्त योगी ना दहशतगर्दी जुस्तलाणियों कार्रवाई कौम के हौसले के कमजोर नी कर सन। बलोचिस्तान की आवाम से गड़ी दहशतगर्द आखिरी हद तई पीछो जारी रह। आईएसपीआर मौजूद फील्ड मार्शल जवान से गड ईद नमाज पढ़ी ए खेन वाधाय डिन्यू। जवान के जज्बे की सारा फील्ड मार्शल शहीद की यादगार से हाजिरी भी भरी। सदर आसिफ अली जरदारी ए वजीर आजम शहबाज शरीफ कौम के ईद उल अज़हा जो वाधायूं। सदर आसिफ अली जरदारी है ईद उल अज़हा अतात इलाही सबर इखलाक ईसार जो अजीम सबक डे थी। हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मुसलमान लाइ मशले राह है। कुर्बानी रुगो मजहबी फर्ज न पर मुकम्मल इखलाकी पैगाम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी ए खुदा के अतान जो दर्स डे थी। आला मकसद लाए जान ख्वाहिशों मफाद कुर्बान करण ईमान जो महराज है। पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी बेन पारा भी कौम के ईद जो वाधायूं।
1: हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे तई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GAFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252578 6।
5: जी हाँ बुड़ी 331525786
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: जी जी
1: बसल जेके दो सबले लफदन के मुझे बारा लख लख एक दिन मुबारक हो
0: खैर मुबारक है पांजो खास क्या रख जो है हमेशा खिलंदा मुस्कुरांदा रहो
1: बड़ी मेहरबानी
0: थैंक यू सो मच बिल्कुल जनाब हमारे साथ बहुत प्यारे से कॉलर और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हाथ पे हाथ रख के मत बैठे क्योंकि हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होता बिल्कुल जनाब बहुत सारे प्लान दिमाग में बनते हैं और वहीं से खत्म हो जाते हैं इसलिए अमली जामा बनाने के लिए इनको आप को अमल करना होगा और आपको वो चवंदा ना इन चुरण पूर्ण पौधो चुरो पुरो पो कॉल भी नेक्स्ट कॉल अस्सलाम वालेकुम
2: साईं वालेकुम सलाम
0: वफ़ा वही जतो ही असां सभी संगत आहिनि
2: साईं बिल्कुल बिल्कुल
0: ॾिसो मां तव्हांजी आवाज़ खे तव्हांखे सुञाणे थो वञा
2: बिल्कुल बिल्कुल ज़ाहिर वफ़ा अब्दुल वहीद जतोई केटी शाह बिलो
0: केटी शाह
2: तालको ज़िलो सखर आहे माना रोड़ी ऐं सखर जे विच ते आऊं
0: वाह वाह वाह वाह मज़ा माना रोड़ी त बि वठो था सखर था बि वठो था ख़ुशि नसीब
2: दरिया जे कड़ ते ॻोठ आहे
0: वाह वाह ईद मुबारक
2: साईं ख़ैर मुबारक ख़ैर मुबारक अॻ में त तव्हांखे स्पेशली भाजपा कंदासीं ईद मुबारक वफ़ा अब्दुल वहीद जत तरफ़ो ऐं तव्हां जे सॼी टीम खे जी भाई बाबर आहे जी भाजी सुमेरा ताणी आहे जा न आई जा रुखसार आहे इनखे ईद मुबारक पर सिक भरियो सलाम बि
0: वालेकुम अस्सलाम वफ़ा भाउ तव्हां इहो ॿुधायो ईद तव्हांजी कीअं गुज़रे थी
2: साईं सुठी सुठी बहितरीन छो त महांग बिल्कुलु आहे पर असां हिमत न हाराई
0: आहे
2: असां हद अंदरि जेको ख़र्चु आहे उहो कयो आहे मिसाल पंहिंजो लटो कपिड़ो ज़मानो बाक़ी बिल्कुलु महांग पाए ईद बहितरीन गुज़री मिटनि माइटनि सां गुज़ारीसीं पंहिंजी त ॻोठ में पोइ मिटनि माइटनि बि गस्त लॻायासीं
0: साईं माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त माना मिटनि माइटनि खां बि माना ईद करे आया आहियो तव्हां
2: जी जी बिल्कुलु
0: अच्छा इहो ॿुधायो त उज़ ई तव्हां कई आहे
2: साईं असां कई न आहीं बाक़ी अॼु न कई आहे बाक़ी सुबुह जी हिकिड़ो भाङो खणबो आहे न मिसाल सत भाङा हूंदा
0: आहिनि पती जेके चवंदा आहिनि
2: हा उन में इनशाला फजर उमेद आहे त खणंदासीं
0: अच्छा इहो ॿुधायो त कसाई कयो अथव बुकिंग या पाण कंदव हुनखे
2: न पाण पाण
0: हा सही आहे कसाई त इलाही नखरा थी विया
2: बिल्कुलु बिल्कुलु
0: सही पाण हा बिल्कुल ठीकु आहे त इहो ॿुधायो हाणे हिकिड़ो दोस्त मूंखे फरमाइश कई आहे हाफ़िज़ साहब
2: दोस्त फरमाइश करे पर जेको तव्हां टॉपिक आहे त इन ते त कुझु ॻाल्हायो न
0: कहिड़ो टॉपिक
2: जेको तव्हां चओ पिया
0: सफ़ाई जे हवाले सां
2: हा त सफ़ाई जे हवाले सां
0: जी बिल्कुलु तव्हां ॻाल्हायो तव्हांखे खुली छूट आहे
2: ईअं आहे त मिसाल हाणे तूं पंहिंजे दर जे अॻियां जा किथे बि उज़ाई कई आहे
0: जी जी
2: त उहा तोखे सफ़ाई करणी आहे मिसाल
0: बिल्कुलु
2: वरी अॻियां मां कई आहे मूंखे सफ़ाई करणी आहे बाक़ी जे ईअं हथ हथ ते ॾेई वेही रहंदा त बाबा सरकार ईंदी उहा खणंदी त पोइ इहो पंहिंजे लाइ मसालो बणबो
0: पंहिंजे लाइ मसालो बणबो छो त सरकार किथे किथे पुॼंदी भाउ सरकार करे त अथी माण्हू बि कुझु अहिड़ा आहिनि जेका थोरा घणा सुस्त आहिनि असां जहिड़ा त पोइ किथे पुॼनि था किथे नथा पुॼनि पर कोशिश त करे थी न पर पंहिंजे पाड़े जी पंहिंजे घिटी जी सफ़ाई त असांजो फर्ज़ आहे न
2: बिल्कुलु
0: जंहिंजे ताईं सरकार न ईंदी असां धप में मरी
2: वेंदासीं
0: जी जी
2: त माशाला तंहिंजे प्रोग्राम में सुठी कालंग हले थी मुंहिंजा त पघर निकिरी पिया पर माशाला काल लॻी वई
0: अच्छा वाह वाह वाह वाह वाह
2: अॻिले मां प्रोग्राम जलाल चयो मां पर कोन ॿुधायो तोड़ ताईं मां कनाए कनाए थकी
0: मां जलाल हाणे तव्हांखे ॿुधायो थोरी देरि पहिरीं
2: उहो त अॻु हाणे ॿुधाई न उहो मां बिल्कुलु ॿुधो पर मां अॻिले हुन जी थो ॻाल्हि कयां पर हाणे असांखे नगमो जेको हाणे अदो अलॻि कहिड़ो मास्टर मंदुर चई वियो नी
0: ओके
2: इहो मूंखे ॿुध रहे जो स्पेशली पर ना कजो यार साईं
0: मास्टर मंज़ूर कहिड़ो
2: जेको हे दोस्त ॿुधायो त मूंखे हे नगमो ॿुधायो
0: ईद आहे मेरा यार नी आयो
2: हाणे त इहो मास्टर जो आहे नी
0: अच्छा मास्टर जो आहे न हे त मूंखे ख़्याल में नदीम अब्बास लूने वाले जो आहे
2: मास्टर आवाज़ अथव
0: हा हे पंजाब जो नदीम ऐं असांजो मास्टर
2: आहे मां सां कुझु भार पिया आहिनि भाटिया पिया आहिनि
0: पर हिकु ॻाल्हि त ॿुधायो तव्हां चयो त मूंखे पघर अची विया भला छो तव्हां वेह वेही नंबर न मिलंदा
2: आहियो साईं उहो हीअं काल अॼु मिलंदी न मिलंदी छो जो ईद मोकिलियो विया नी
0: हा सही सही
2: उहो इन जे करे
0: ओके ओके ओके ओके
2: कंहिंखे भार पिया आहिनि
0: जी जी
2: भाटिया अथनि नंढड़ो भाटियो अली रज़ा जेको हिन वक़्तु कन ॾिनी रेडियो ॿुधे थो अली रज़ा खोड़ सारा सलाम ॾे वरितो ऐं मुंहिंजो भाउ आहे ज़हीर मां जतो मुंहिंजो भाटियो आया त मां जतो आस बि चाचर लाड़काणी खऊं
0: जी
2: ऐं तंहिंखां बाद में बाबर शेख साहब खोड़ सारा सलाम ऐं भाणी जा मुंहिंजो रफ़ीक जतो ॿुधे थो
0: त
2: भाणी जी रफ़ीक जतो ईद मुबारक बि बाक़ी जेके ॿुधनि था वफा अब्दुल वहीद जते पर ईद मुबारक अभी बाय बाय
0: थैंक यू सो मच भाणे जो वरी गोश्त गोश्त खाने में फ्री हूं।

0: थैंक यू दा जी जनाब, गोश्त भी खाइए, ईद भी मनाइए, दोस्तों के साथ मिलिए भी सही, और जनाब इस ईद को शानदार भी बनाइए। और हाँ, मुझे भी कॉल कीजिए, आपके साथ हूँ मैं शाम के 7 बजे तक, और ईद के तीनों दिन मैं आपके साथ आऊंगा, और 5 से 7 तीन दिन आपके साथ होगा हमारा और आपका साथ, और हम और आप मजे करेंगे जनाब ईद के शो, ईद की धूम में। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम, सबनी सा गड कश्मोर वाला भाग, केड़ा हाल चाल है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, ईद मुबारक हो जी, बताएं के थैंक यू। ईद किए था गुजारे उदा? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, तां के असन प्रोग्राम किए तो लगे अच्छा एवन हां एवन प्रोग्राम में गाना तो बुधाया के जे नाले था करना चाहो
1: पका पका जे करे तो
0: सही। ताजी कॉल भी ड्रॉप थी ताजी सिग्नल ड्रॉप थे दादा।
1: अल्लाह
0: ओके सर। कश्मोर खान सभी से गड हो प्यारा भाई, हाँ वा शो जी एक भी नेक्स्ट कॉल दिसूँ लाइन तभी गड्डे है। ईद मुबारक तमाम सभी दोस्तों के इन वक्त बुधन था, जिते जिते असाजी आवाज बने थी, तहां असा के कॉल कर सको था 03000113488। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: केर दासा सबनी सा गड
1: जावेद बलो
0: जावेद बलोच साहब तांके सबनी का पहनी ईद मुबारक।
1: मुबारक
0: खैर मुबारक खैर मुबारक। ईद ये तो बुधायो ईद की तो गुजरी ताजी सुठी गुजरी थी माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त सुठी गाल है। तो यो बुधायो गानो तो बुधाया केंजे नाले था करना चाहो जी तमारा सिग्नल ड्रॉप जी सही ओके ओके घने ताजा सलाम पहुंची भी आना था। थैंक यू सो मच, ताजी आवाज ड्रॉप थी आई एम सॉरी। असा सभी से गड़ा है। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम चाचू, कोई सॉन्ग चलाइएगा ईद स्पेशल मेरे लिए आप अपनी पसंद पर। ओके जनाब, जारा खुशी सालार समेजो और कश्यप जारा हमारे साथ मौजूद हैं, तो जनाब कहती हैं अस्सलाम वालेकुम चाचू, कोई स्पेशल सॉन्ग चलाइएगा ईद के लिए मेरी पसंद पर। जारा खुशी सालार समेजो और कश्यप जारा हमारे साथ मौजूद हैं, तो जनाब मैं भी प्ले करता हूं जारा खुशी सालार समेजो कश्यप जारा, और हाफिज साहब की फरमाइश पर एक बहुत प्यारा सा गाना, ईद आ गई है मेरा यार नहीं आया, तो इस गाने को सुनिएगा और हमारे साथ रहिएगा GFM 88 नेटवर्क पर। हम आपके साथ हैं शाम के 7 बजे तक, तो जनाब हम प्ले करते हैं एक बढ़िया सा गाना, तो इस गाने को सुनिए और हमारे जबरदस्त से शो को बहुत ज्यादा एंजॉय कीजिए, जो कि शाम के 7 बजे तक आपके और हमारे लिए पेश कर रहा है GFM 88 नेटवर्क। तो सबको सुनने वालों को एक बार फिर से ईद मुबारक।

0: खुशियों कुर्बानी और मोहब्बत का त्यौहार जी सखर FM
1: इस ईद नजर किए। हाय डियर लिसनर्स, मैं हूं आपका आरजे अमीर बख्श। मेरी जानिब से ईद उल अजहा के पुरमुसरत मौके पर आप लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। ईद मुबारक, ईद मुबारक। असा ईद उल अजहा जे पुरमुसरत मौके ते साबिक सेनेटर मोहतरम जनाब मोहम्मद असद अली खान जुड़े जो साहब, मोहतरम जनाब मेहदी मोहम्मद खान जुड़े जो साहब, गोठ खान साहब दीन मोहम्मद जुड़े जो साहब जे गोठ जी जुड़े जो बिरादरी आई मुल्क पाकिस्तान में रहंदड़ खास खेली बिरादरी के दिल जी गहराइन सा ईद उल अजहा जू लख लख वाधायूं पेश करूं था। पारा गुलाम फी अली गुल खास खेली, मोहम्मद यासीन खास खेली, काउंसलर यूसी सिंधड़ी, गोठ हाजी मोहम्मद उर्स खास खेली, यूनियन काउंसिल सिंधड़ी, तालको सिंधड़ी, जिलो मीरपुर खास।
2: बेमिसाल लोगों के लिए बेमिसाल ऑफर, अब हफ्ता वार बेमिसाल प्लस ऑफर के साथ मिले। पांच जीबी डेटा और 10 रुपए के लोग में
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
4: मोर को दिल्ली राणा, मोर को दिल्ली,
3: आवाज की डोर से बंधा हुआ
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
6: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
7: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
8: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
9: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
9: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
8: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 0331252578 6।
9: जी हाँ 2315525786
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
3: शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: आई। हाँ, गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हाँ, बुड़ी 231-25-25-786
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: एलोवेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

सिंध समेत समूरे मुल्क में ईद उल अज़हा मज़हबी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाई पई वञे। मुल्क जे नंढनि वॾनि शहरनि में सूरत इब्राहिमी तहत जानवरनि जी क़ुर्बानी जो सिलसिलो बि जारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी नवाबशाह में ईद नमाज़ अदा कई। वज़ीर शहबाज़ शरीफ लाहौर में ईद जी नमाज़ पढ़ी। नंढनि वॾनि शहरनि में ईद नमाज़ जे मेड़ाकन दौरान सिंध समेत समूरे मुल्क जी ख़ुशहाली ऐं सलामती लाइ ख़ासि दुआऊं घुरियूं वयूं। केजीएन न्यूज़ तर्फ़ां आलम इस्लाम खे ईद जूं वाधायूं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चयो सदर मुमलिकत टिन्ही हथियार बंद फौजनि जे सरबराहन मुख़्तलिफ़ हुकूमती ऐं सियासी अॻवाननि सां फोन ते राब्तो, सभिनी खे ईद वाधायूं ॾिनियूं। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ऐं नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ खे फोन करे ईद जी मुबारकबाद ॾिनी। हथियार बंद फौज जे पेशावरणियुनि सलाहियतनि ऐं क़ौमी सलामती लाइ ख़िदमतनि तोड़ी क़ुर्बानीनि जी साराह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर आसिफ अली ज़रदारी चइनि सूबनि जे गवर्नर वॾनि वज़ीरनि क़ौमी असेंबली जे स्पीकर या सारे गिलगित जे वॾे वज़ीर ऐं ॿियनि सां बि फोन ते राब्तो करे ईद जूं वाधायूं ॾिनियूं ऐं मुल्क जी मजमूई सियासी सूरताल ते ख़ैरची ॾे वठि कई। शहबाज़ शरीफ़ चयो त उहा हुकूमत अवाम खे वध खां वधि रिलीफ़ फराहम करण जी कोशिश करे रही आहे। अल्ला ताला पाकिस्तान खे अमन, तरक़ी ऐं ख़ुशहाली अता फरमाए ऐं क़ौम खे एकजुट तौर सां नवाज़े। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ईद उल अज़हा बलोचिस्तान जे ज़िले सोप में अॻे मोर्चनि ते मुक़रर जवाननि सां गॾु ईद मल्हाई। मुल्क जी सलामती ऐं ख़ुशहाली लाइ ख़ासि दुआऊं। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर चयो आहे त दुश्मन जी नापाक इरादनि खे हर क़ीमत ते नाकाम बणाईंदासीं। भारतीय सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी बर्दाश्त योगी न आहे। दहशतगर्दीअ जूं वसिलाणू कार्रवायूं क़ौम जे हौसले खे कमज़ोर नथियूं करे सघनि। बलोचिस्तान जे अवाम सां गॾिजी दहशतगर्दनि जो आख़िर हद ताईं पीछो जारी रहंदो। ISPR मूजिब फील्ड मार्शल जवाननि सां गॾु ईद नमाज़ पढ़ी ऐं खेनि वाधायूं ॾिनियूं। जवाननि जे जज़्बे जी साराह। फील्ड मार्शल शहीदनि जी यादगार ते हाज़िरी बि भरी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जूं क़ौम खे ईद उल अज़हा जूं वाधायूं। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त ईद उल अज़हा अतात इलाही सबर इख़लाक़ ऐं ईसार जो अज़ीम सबक ॾिए थी। हज़रत इब्राहिम अलसलाम ऐं हज़रत इस्माईल अलसलाम जी क़ुर्बानी मुसलमाननि लाइ मशल राह आहे। क़ुर्बानी रुगो मज़हबी फ़र्ज़ न पर मुकमल अख़लाक़ी पैगाम आहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चयो त ईद उल अज़हा सुनत इब्राहिमी क़ुर्बानी ऐं ख़ुदा जी अतानि जे दर्श ॾिए थी। आला मक़सद लाइ जान, ख़्वाहिशूं ऐं मफ़ाद क़ुर्बान करण ईमान जो महराज आहे। डिप्टी चेयरमैन लाल भुट्टो ज़रदारी, स्पीकर क़ौमी असेंबली या सादिक़ वफ़ाक़ी क़ौम वज़ीर हसन नक़वी ऐं ॿियनि पारां बि क़ौम खे ईद जूं वाधायूं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो मलेशियन हमन सां अनवर इब्राहिम सां फोन ते राब्तो। ॿिन्ही अॻवाननि हिक ॿिए खे ईद जूं वाधायूं ॾिनियूं। नेक ख़्वाहिशनि जो बि इज़हार कयो। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ख़ते में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जी कोशिशुनि खे साराहियो। शहबाज शरीफ जी सिफारती कोशिशुनि में अॻुवराई बाबति मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म खे आगाही। अनवर इब्राहिम चयो त दुआगो आहियां त शहबाज शरीफ़ ऐं संदसि टीम खे कामयाबी मिलनि। वज़ीर-ए-आज़म अमन क़दमनि जी हिमायत ते मलेशियन हमन सभु जा थोरा मञिया।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
1: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रिट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो

0: ये अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एज ब्यूटी सोप व्हाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
2: 0331252578 6
3: जी हाँ बुड़ी 381 525 786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।